उन्होंने उसको नहीं देखा जो उनके आगे और पीछे है, यानी आसमान और जमीन। अगर हम चाहें तो उनको जमीन में धंसा दें या उन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें। इसमें हर बंदे के लिए जो रुजू करने वाला है एक निशानी है। السرد واعملوا

الشهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن

तो उन्होंने शुक्रगुजारी से मुंह फेर लिया। बस हमने उन पर बंद तोड़ सैलाब छोड़ दिया और उन्हें उनके बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जिनके मेवे बदमजा थे और जिनमें कुछ तो झाओ के पेड़ थे और थोड़ी सी बेरियां। ये हमने उनको नाशुक्री की सजा दी और हम सजा नाशुक्रे ही को दिया करते हैं। और हमने उनके और मुल्क शाम की उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत दी थी एक दूसरे के मुत्तसिल देहात बनाए थे जो सामने नजर आते थे और उनमें आमद रफ्त का अंदाजा मुकर्रर कर दिया था कि रात दिन बेखौफ खतर चलते रहो। तो उन्होंने दुआ की कि ऐ परवरदिगार हमारी मुसाफतों में दूरी पैदा कर दे और उससे उन्होंने अपने हक में जुल्म किया। तो हमने उन्हें नाबूद करके दास्तान बना दिया और उन्हें बिल्कुल मुंतशिर कर दिया। इसमें हर साबिर और शाकिर के लिए निशानियां हैं।

0: जी जान तारो मसालो हर वे जे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शरायत जवाबित लागू हैं
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बारन के पोलियो खां बचाव जा कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: हर बार जा

दिफाई वाइदन जा ऑपरेशनल तफ़सील अवामी सतह ते नाहन बुधाया वेंदा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो अरब टीवी के ॾिनल इंटरव्यू। DGISPR चयो आहे त कंहिं बि मुल्क खिलाफ़ असांजा इरादा जारणा न आहिनि। दिफ़ाई सलाहियतनि ते भरोसो आहे। दिफ़ा करण सां गॾु सज़ा ॾियण जी बि सघ रखूं था। अफ़गानिस्तान बाबति मौक़िफ़ वाज़े आहे। अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल न थियणु घुर्जे। भारत पंहिंजी फ़ौजी ताक़त में इज़ाफ़े लाइ घणा वसीला ख़र्च करे पियो। पाकिस्तान जे दिफ़ाई सलाहियतनि जो मक़सदु सिर्फ़ मुल्की दिफ़ा आहे। कोशिश माफ़ करण जोगी नाहे। हरम जे तहफ़ुज़ लाइ पाकिस्तानी क़ौम सऊदी अरब सां कुलो कुले में मिलाए बीठल आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हुसैन जे हमले ते सख़्त रदे अमल। वज़ीर आज़म चीन ॾियारींदड़ क़दमनि ते अफ़सोस जो इज़हार कंदे चयो आहे त मके ते हमले वारी किरियल कोशिश कंहिं बि सूरत में माफ़ी जोगी नाहे। असांजो ख़ितो तकरारनि जी घरी क़ीमत अदा करे रहियो आहे। धुरियूं सबर जो मुज़ाहिरो कनि ऐं वधीक चिकताण खां पासो कनि।

बचाव वारे वजीर ख्वाजा आसिफ चयो आहे त मके मुआहिदो न बि हुजे त मुक़दस हंधनि जी हिफ़ाज़त असांजो फर्ज़ आहे। मके दिफ़ाए मुआहिदो असां ते लागू थिए थो ऐं पंहिंजो फर्ज़ अदा कंदासीं। मके मुकरम ते हमिलो थींदो त हुन जी हिफ़ाज़त लाइ मुआहिदे जी ज़रूरत न आहे। ख्वाजा आसिफ बयान में चयो त हू तफ़सीलनि में नथो वञे सघे पर मके मुआहिदे ते अमल जा पाबंद आहिनि। खिते खे पंहिंजो दिफ़ा पाण करणो आहे त हिते नवां इताद बीठांदा। खेसि नथो लॻे त ईरान रियासत तौर खिते में को नओं मुआहिदो खोलींदो।

0: यमन जे होसिन मके मुकरम जे हवाई हदनि में ड्रोन उमाणे रेड लाइन क्रॉस करे छॾी। सऊदी पारां ड्रोन खे हवा में ई तबाह करण जी दावा। सऊदी फौजी इतिहाद जो चवण आहे त यमनी होसिन जे ड्रोन खे मके जे फिज़ाई हदनि में दाख़िल थियण खां अॻु तबाह कयो वियो। मुक़दस हंध असांजी रेड लाइन आहे। होसिन खे इन हरकत जो इंतिहाई सख़्त जवाब ॾिनो वेंदो। होसिन पारां मके ते ड्रोन हमले वारे इल्ज़ामनि खे रद्द करे छॾियो। सूबे मार्च जे हवाई हदनि में सऊदीअ जो F-15 जहाज तबाह करण जी बि दावा।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000-338-5569।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
8: 03013992836।
7: आई मोहम्मद उमेर गोरी, 03019-15-5-724।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 and 02424601000
3: हथे गुल मेंदी पेरे गुल मेंदी
4: आई अदी अज त डाडी खुश पई नजर अची
3: छो न खुश थिया अदी जदे खा मुझे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार ईणी थी वई आहे ऐ हाणे पैसा भी ईणा था अचन ही दिस सोनियो चूड़ियो
4: मां बि वञी चवां हुन खे त ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो ई खाराए
5: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो
6: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
7: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे बारन के पोलियो खां बचाव जा कतरा जरूर पियारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफ़ती ताकत के वधाइन था ऐं इन्हनि जे ख्वाबन के उॾाम ॾियनि था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माज़ूरी
8: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
9: अस्सलाम वालेकुम अदा
10: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
9: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
10: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
9: न अदा
11: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
9: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
10: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी जल्दी आए
9: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
11: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
10: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
12: 03013992836
13: आई मोहम्मद उमर गोरी 03151557024
14: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: दहर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी, खुद पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हुमशी, नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पा महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई और खपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी दो सास की वरकवल महेरवई, जक चुहम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी और द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ए सूम।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन्स और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।

आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307 3592120।

0: 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Aashiq Honda Showroom Mehrapur Atlas Honda Motorcycle Club per Atmat Aimba Akhtar 3S Dealer Aashiq Honda Motors Mehrapur Jite nai motorcycle ji sale Company aje mukarar kel rate te dastiyab hai Service Center Atlas Honda Limited jo Warranty Claim Center Service Area Jite Honda Motorcycle ji behtareen service kai vendi hai Honda Company aja tamam genuine spare parts khususi riyat te maujood Aashiq Honda Motors te pehje Honda Motorcycle ji tuning karayo Computerized Japanese Stitching Machine je zariye jehme mile thi motorcycle ji karkardgi tamam behtar Fuel Adjustment RPM ji Adjustment Computerized Japanese Machine zariye kai vanye thi Honda je Qualified Technician je zari nigrani Aashiq Honda Motors Address Indus Bypass Nast Railway Line Mehrapur Rabte Jilai Asim Hussain Arai 0307-3592-120
1: Sona Sirf Zewar Nahi Har Ghar Ki Amanat Hoti Hai Isiliye Bank Islam Ne Laya Pakistan Ka Pehla Sharia Compliant Gold Based Financing Jisse Mile 50 Lakh Rupay Tak Ki Financing 4 Saal Tak Ki Muddat Ke Saath Bank Islami Gold Based Financing Se अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत जवाबित लागू हैं
3: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद Thari Road, Mehrapur, 0300-338-5569.
4: ਹਰ ਬਾਰ ਜਾਂ ਨੰਡੜਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਧਨ ਤਾ ਪਰ ਪੋਲੀਓ ਇਨਨ ਕਦਮਨ ਕੇ ਰੋਕੇ ਵੀ ਸਕੇ ਤੋ ਇਨਹੀ ਕਰੇ ਜਦਹੀਂ ਵੀ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲੀਓ ਵਰਕਰਨ ਜੀ ਦਸਤਕ ਥੇ ਤਾਂ ਦਰ ਖੋਲਿਓ ਐਂ ਪਹਿੰਜੇ ਬਾਰਨ ਕੇ ਪੋਲੀਓ ਖਾਂ ਬਚਾਓ ਜਬ ਕਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰਿਓ ਛੋ ਤੇ ਇਹ ਕਤਰਾ बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
3: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301 54 54 456 ऐं तौकीर अहमद 0306

0: जी जान तारो मसालो हर वे जे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करयो
1: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना देयो नवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंज दा कदमुनो द्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखबल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी द्वसास की वरकवल महेरवई जकच हम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000 3105109 03000 3105109
0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320018003
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
3: मुजे दुकान जी बेड हरंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नजगर्लस डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836
7: मोहम्मद उमेर गोरी 0319 1550 724
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे बारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो। छो त ये कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836
5: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing. Sona sirf zevar nahi har ghar ki amanat hoti hai. Isiliye Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing. Jisse mile 50 lakh rupaye tak ki financing 4 saal tak ki muddat ke saath. Bank Islami Gold Based Financing se amanat ko apni jagah rehne do. Aaj hi 111-475-264 ya bankislami.com.pk par apply karein. Sharaait o zawabit lagu hain.
2: Duniya ke zyadatar mumalik se polio ka khatma ho chuka hai. Sirf do mulk rehte hain jahan ye virus abhi tak bachchon ka mehfooz mustaqbil chheen raha hai. Aur badkismati se hamara mulk bhi in do mumalik mein shamil hai. Ab zimmedari हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94.

पाकिस्तान पारां मके जे तहफ़ुज़ लाइ सऊदी अरब जो साथ ॾियण जो अज़म परॾेही तर्जुमान सजाद हैदर प्रेस ब्रीफिंग में चयो त मके खे निशानो बणाइण शर्मनाक अमल आहे। अहिड़े अमल सां सॼी दुनिया जे मुस्लमाननि जे जज़्बनि खे चियो रसियो आहे। हुसैन खे सऊदी अरब ख़िलाफ़ हमला रोकणा पवंदा। भारत 15 सेप्टेम्बर ते समुंड में पाकिस्तानी इक़्तिसादी ज़ोन में जाराणी हरकत कई। भारतीय कदम खिते जे अमल लाइ ख़तरो बणजी विया आहिनि। सिख यात्रियुनि खे भारत वञण खां रोकण वारियुनि ख़बरूं ग़लति आहिनि। पाकिस्तान सिर्फ़ वैसाखीअ लाइ 2800 खां वधीक वीज़ा जारी कया। करतारपुर राहदारी बे भारत बंदि करे छॾी आहे। पाकिस्तान सिख यात्रियुनि जी आजियां करण लाइ तयारु आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ी ऐं फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर विच में फोन ते राबितो खिते जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ईरानी मीडिया मूजिबि अब्बास इराक़ी तुर्किया जे परॾेही वज़ीर सां टेलीफोनिक राबितो कयो। अब्बास इराक़ी चयो आहे त ईरान अवाम जे हक़नि ऐं मुफ़ादनि जी ज़मानत आजियां करे थो। चीन नथो चाहे त इलाक़ाई छिकताण यमन रेड पहुचे। सभई धुरियूं सूरत हाल खे वधीक मुंझाइण खां पासो कनि ऐं मसला ॻाल्हियुनि ज़रिए हल कनि। चीनी परॾेही वज़ीर बीजिंग में ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ी सां मुलाक़ात। वांग चिंग चयो त चीन लाइ आलमी छिकताण ख़त्म करण में तामीरी किरदार अदा करण लाइ तयारु आहे। सभई धुरियूं आपनार मुस्कोरण लाइ कदम खणनि। ईरान ऐं अमरीका जल्द खां जल्द इस्लामाबाद मुफ़ाहिमती यादाश्त नामे तरफ़ अचनि। अमेरिकी सदर ईरान जंग जल्द ख़त्म करण जी उमीद ज़ाहिर करे छॾी आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण आहे त ईरान ख़िलाफ़ जंग पुॼाणीअ ते आहे। रॉयटर्स मूजिबि ट्रंप जे बयान जी उबतड़ जंग वधीक पखेड़जण जो ख़दशो वधी वियो आहे। अमेरिकी मीडिया दावा कई आहे त अंगारे गरियल क़ौमनि जी जनरल असेंबली जे इजलास में ट्रंप जे नार वारनि मुल्कनि सां मुलाक़ात जो इम्कान आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जो बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि फोर्स जे ज़िले आवरान में कार्रवाई दौरान 3 दहशतगर्द जहनम भेड़ा कया विया। ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां वॾे अंग में हथियार हथ कया विया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठि दानिश यूनिवर्सिटी बाबति इजलास। दानिश यूनिवर्सिटी जे क़याम लाइ वज़ीर आज़म जी हिदायत ते ॾिनल अखभराई बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। वज़ीर आज़म चयो त होशियार ऐं मुस्तक़ शागिर्दनि खे मेरिट ते मयारी ऐं जदीद तालीम जी फ़राहमी तरजीह आहे।

मनवा में बैठल नारी मुबैना तौर अगवा एनसी दाखिल हक भाव कॉलोनी वासी मनवा में बैठल जतिम नारी मरियम चनो मुबैना तौर अगवा थी वही नारी के भाव जाकिर चनो जो चवण है जवाबदार मोहम्मद बुड़ो पेंजे साथिन सा गड़ घर भातिन के यरकमाल बनाए भेण के अगवा को है वाकई जी एनसी दाखिल करने बावजूद पुलिस कुछ भी ना कि इंसाफ किया वे पुलिस जो चवण है नारी के मुबैना अगवा जी एनसी दाखिल कराई वही है जांच क्यों पाया ओस्ता मोहम्मद ने गड़ी खेरो वासी डॉक्टर जो घर में गोलियों लगल लाश हथायो है पुलिस जांच लाए डॉक्टर की घरवारी के पेंजी तेवील में वी पुछा गाछाछ शुरू कर छी पुलिस चवण है डॉक्टर जो मौत कतल है या आपघात जांच बाद खबर पवंदी।

0: मटियारी गंबट ऐं शाहपुर चाकर में रोड हादसा, औरत समेत टे ॼणा फौत, छह जख़्मी। मटियारी वेझो मुसाफ़िर कोच जे टकर में रोड क्रॉस कंदड़ औरत आशी मेघवाड़ फौत, हिकु ज़ख़्मी। गंबट लग कार जो मोटरसाइकिल सां टकर, नेशनल बैंक खोड़ा जो मैनेजर ज़ुल्फ़कार अबड़ो फौत। शाहपुर चाकर में पलाल सां भरियल ट्रैक्टर ट्रालीअ खे टकर जो लॻण सबबि टेवीह वरनि जो खैर बख़्श बिरोही फौत थी वियो, पंज ॼणा ज़ख़्मी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307 3592120।

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था। पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109।
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03000-3855-69।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नौ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बे डरंदी।
5: हां दा कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

तुम्हारी उम्मीद माजिज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद माजिज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सिंडिप धंधेड़े तमाम खूबसूरत नासुमही सुने समातम से मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। दुआ के समय गए शहादों की बारिश और लाजवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक ऐसे कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जागते समय से आसमान तक जिंदगी से मौत तक सांस से तारदकों से खुशी तक दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर बातें की जाएंगी और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि भाई खूबसूरती आप कैसे हासिल कर सकते हैं और खूबसूरतियाँ जो है वो हासिल करना आज के दौर में आसान काम हो चुका है या फिर मुश्किल, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी होती है जिनको अगर हम जानेंगे नहीं पहचानेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो अगर आप भी ये तमाम चीजें जानना चाहते हैं, खूबसूरती कैसे हासिल करनी है, खूबसूरती की दुनिया में कैसे कदम रखना है और खूबसूरत कैसे हमेशा के लिए रहा जा सकता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा ना सिर्फ आपकी खूबसूरती की बातें होंगी बल्कि आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भी होगी, आप लोगों के लिए गाने भी होंगे, आप लोगों के साथ बातें भी होंगी और आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया जाएगा। बिल्कुल जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिस तरह से तैयार की गई है, जिस तरह से आपके इस्तेमाल के लिए है जनाब, तो आप यकीन जाने इस तरह का कोई प्रोडक्ट आपने अभी तक यूज नहीं करके देखा होगा, क्योंकि जिस तरह से डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है ना, वो तमाम चीजें इसके अंदर एड की गई है जो कि आपकी स्किन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए है, आपके चेहरे को चमकाने के लिए है और आपको हमेशा के लिए ब्यूटीफुल बनाने के लिए है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है, ये वो प्रोडक्ट है जिनकी आप हमेशा से जो है ना वेट में थे, क्योंकि हम इन चीजों के बारे में थोड़ी जो है ना बात ज्यादा करेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी खूबसूरती से रिलेटेड कुछ चीजें नहीं जानते हैं तो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम का हिस्सा है, प्रोग्राम का हिस्सा बनना भी चाहते हैं, तो बिल्कुल जी बताएंगे क्या तरीकेकार होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर कितना कितनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल जी अपना तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सदरा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सदराव के साथ मौजूद है जनाब इस प्यारे खूबसूरत से प्रोग्राम में आप लोगों को खूबसूरत बनाने के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम लेकर हाजिर हो चुके हैं जनाब। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करें तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ अगर आप अपने हाल चाल बता देंगे तो क्या ही बात बन जाएगी, तो बताइए कैसे हैं। हाँ जी जनाब, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए आने के फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सभी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की समा लाने का काम करेगी ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों 440 उल्की समाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करेंगे जनाब एक बहुत ही खूबसूरत से कसीदे के साथ। तो बहुत प्यारा सा कसीदा हमारी लिस्ट में मौजूद है जनाब, कसीदा सुनते हैं उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो आपने क्या कहना है, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। आप सुन रहे हैं वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम। लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं, रोजाना सुनते हैं, या फिर आप घुड़ने वाले लिसनर से यानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके हमें सुनते हैं, तो जी अपने होने का एहसास लाइए, प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम हो जाइए। और ऐसा कीजिए, अपना सेलफोन उठाने के साथ साथ मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जिए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, और जिए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है, और वहाँ पर आइए आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आप लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, तीनों काम आप लोगों नहीं करने हैं, तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और मुझे बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद और कहां से सुन रहे हैं ये भी बताइए, और सबसे बेहतरीन बात कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डीज की ब्यूटी क्रीम मिल रही है या फिर नहीं, ये भी आप जरा शेयर किया करें, ताकि हमें पता चले कि कहां कहां पर डीज की ब्यूटी क्रीम मिल रही है और कहां कहां पर अवेलेबल कराना अभी बाकी रहती है। ओके जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है मैंने। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए, आप क्या करेंगे, आपको जो नंबर बताऊंगी प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर बस आपने रब्ता कर लेना है, नंबर के ऊपर रब्ता करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा दी जाएगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश। अगर हाँ ये बात है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो मिलती है लेकिन डी स्किन का फेस वॉश नहीं मिल रहा, तो उसके लिए भी आप नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए, ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल करा दिया जाए। तो जल्दी जल्दी से डायल कीजिए 0333-2738-4309 बुड़ी 300 बट्टी है 73-84-309 ब्यो नंबर आहे 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 50-25-907 ही नंबर सांझे के तमा डायल करे पांच करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अवेलेबल कराए सको था बिना कहीं देरी जे बिना कहीं टेंशन जे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के पांच करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो उतावनी आसानी सा परचेज करी अचो आई मुखे बुधायो बाजी असा भी वठी आया आयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ओयो तई जेको डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी आयो आ तमा वठी आया कोन मुखे जल्दी बुधायो मुखे बुधायो केड़ो इंसान आ जेके खराब सेहत सा फायदो मिलंदो आ है समझो था। उनका अलावा तमा असा के ज्वाइन करना वनियो पे बिल्कुल तमा जा फीडबैक साइन प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम रखिया विंदा सब का पिना सनी प्रोग्राम में अनवर भा मौजूद है कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आदि वेलकम कयूं था वाइटेश एनडी स्किन ब्यूटी शो में तमा के भी सोना भा वेलकम कयूं था। अच्छा सदा मलिया में सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम हजार भाई आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम हजार भाई में ठीक ठाक आप बताएं कैसे हैं। और जवान मोहम्मद बलचल शंभानी भाई हमारे साथ हैं भाई को वेलकम कहा जाता है। अब्दुल गफार भाई हमें सुन रहे हैं जी मेलसी से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और मेलसी में भी आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है जनाब तो बस आप जाइएगा अपने करीबी जनरल स्टोर से जरा मालूमात लीजिएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहां कहां पर अवेलेबल हो चुकी है। वैसे मुझे पता है कि मेलसी में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है। और अनवर भात हमारा लिंक शेयर किया ओके मारे साथ ही गानों हलाए बैठू था। और फरवा कहती है वालेकुम असलम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे हाय आप कैसी हैं होप यू आर फाइन एंड वेरी वेल यस आप बताएं आप कैसी हैं। फैसल अहमदानी हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम बाबा वालेकुम असलम बाबा

शाम वाला, हाँ वो थोड़ा सा मतलब पोस्ट का भी इशू था तो उस वजह से शायद हो गया होगा. और ऐसे हमारे साथ मौजूद कहती हैं अस्सलाम वालेकुम ओलाली सलामदर, ओ माय फेवरेट आरजी मैडम मुस्कान, आप कैसी हैं, वेलकम कहते हैं दिल से आपको, हम गुर्दों से वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं. और हजार भाई कहते हैं इंसान टॉपिक वो, अच्छा अच्छा सही सही सही ये कैसे जरा मुझे बताइएगा. दर्दे दिल हमारे साथ मौजूद, वालेकुम अस्सलाम चंदा जानी, आप कैसी हैं, वेलकम टू शो, आपको भी खुश आमदी स्वीटी. नजीर कोसु भाई क्या कहते हैं, बलूचिस्तान से में सुन रहे हैं, लिखते हैं कि किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो, भाई ये कितनी मर्तबा मेरे प्रोग्राम में शेयर करेंगे आप, कुछ और भेजिए. जायद अली बुर्दी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, क्या हाल है आपका, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं. डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करें तो मुझे जरूर बताया करें.

0: और हमारे साथ हिदायतुल्लाह अहमद आनी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कैसी हो मुस्कान। वैसे आपके शो में कॉपी सॉन्ग लाना मेरी जिम्मेदारी है, तो ये कॉपी सॉन्ग चले ठीक है लिंक शेयर करे छो मुख्य तांजलाए कॉपी सॉन्ग हलाए वी। गुलाम फरीद बलोच हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम ठीक ठाक सफा अल्हम्दुलिल्लाह कहते और सारे लोग ठीक हैं जी सारे लोग भी ठीक हैं। आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है सो बहुत शुक्रिया मुमताज मलिक का गाना आपके लिए लाजमन लगा देंगे। दर्द दिल कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल इंतजार कर रही थी आपके शो का थैंक यू। चाचा खालिद कहते हैं हाई आई एम हेयर हेलो चाचा वेलकम कहते हैं। एसन कहते हैं हाँ हाँ सबक हाँ पेरिया हाँ भाई सबक हाँ पेरिया इो कम कंदा कयो वो प्रोग्राम में जिको ना पेर रखंदा कयो सही आ। और नका अलावा तां साजी पोस्ट के लाइक एंड शेयर कंदा हलो मुखे बुधायो केड़ो इंसान आ जेके खराब तबीयत का फायदो मिलंदो आ है समझो था यानी कि खराब तबीयत हुंदी तो उनके फायदो मिलंदो आई मुखे तवा जल्दी जल्दी प्रोग्राम में शामिल थी करे बुधायो तवा से सगड़ मौजूद आ है आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कयो पया यो भी मुखे बुधायो जो छो ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल तवा जे खूबसूरती के सफा नेक्स्ट लेवल ते वठी वणण वारो आ है आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा जे खूबसूरती जे लाए सफा जरूरी आ है तवा जेके भी मानु असा सगड़ मौजूद आ है सब मानु डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कयो जे तवा खूबसूरत हो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी मिली वे सब मानू तुम्हारी तारीफ कन सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन फेस वॉश इस्तेमाल कर रहो खूबसूरती हासिल कर रहो। अच्छा ये टाइम थे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वो जल्दी वापसी उत तट मोटी अचू था तुम कहीं ना मुझे वेठा हो ओ हिं वही ओ हिं मोटा थी सो स्टे टू स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाती रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। It's one.
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर 03003385569।
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी
3: नूरे जा पियो रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध आई वठी अच
4: जीजा ढोर चारो मसालो आज़मेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आज़मायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा
5: हां भाग भरी चंगो थो लगे मां हाणे ही थो वठी अचा
6: जीजा चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करयो।
7: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना देयो नवी दुनिया पलोर रवानवी خود پولیو رنز دا قدمونه و دروله همشی نو پا دی وجه دا پولیو دا هر مهم پا محال دا پولیو تیم دا دروازی تکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهی روی زکه چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا حقی دا خوبون و الوت وزری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری
8: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
9: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
10: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत जवाबित लागू हैं
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी

आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते रहिए, खूबसूरत होते रहिए. मोहम्मद जमान कहते हैं टॉपिक आंसर. अच्छा, आप तो बात को पता नहीं कहाँ लेकर गए हैं. इतना भी आगे नहीं जाना था. अच्छा चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा सिडो, हाउ आर यू, हो फाइन, यस आप बताएं कैसे हैं. ओके, हमारे साथ ही मेहताब अली इंजन भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून. हजार भाई कहते हैं सिस्टर टॉपिक समझ नहीं आया, रिपीट अगेन. बता दिया होगा, अब तो समझ आ गया होगा. अच्छा गुलाम फरीद बलोच लिखते हैं कि अच्छे दिन के इंतजार में उम्र गुजर जाती है, फिर पता चलता है कि जो गुजर गए वही अच्छे दिन थे. तमाम बिल्कुल सुठी गाल कही थी दो आसा सुठन डी जो इंतजार करना है, पर जेके डी असा गुजरी चुका होना है वही दरअसल सुठा डी हुंदा है. अच्छा फैसल अहमदानी क्या कहते हैं, ओके जी कहते हैं एक नौजवान बैंक में सिक्योरिटी गार्ड जी नौकरी लाए वयो, पुछोस अंग्रेजी इंदी थे, नौजवान चयो होर कंदड़ इंग्लैंड मा इंदा जा. पॉइंट तो है. अब्दुल रजाक जजारिया पे सुन रहे हैं, सकरन से आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी. साजिद अली कहते हैं समंदर ना हो तो कश्ती किस काम की, मजाक ना हो तो मस्ती किस काम की, ये जिंदगी कुर्बान है दोस्तों के लिए, दोस्त ना हो तो जिंदगी किस काम की. वालेकुम अस्सलाम, कैफ हाल प्रोग्राम, माशाल्लाह माशाल्लाह. सिद्रा मुस्कान ओखी जी आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है. परवा कहती है आप ही अर्ज किया है, इतना अर्ज मत किया करें, मुझे ये बताएं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रही है नहीं. अच्छा यासीन खान कहते हैं कि मैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट का शॉप लगा रहा हूँ, जबरदस्त है. हाँ जी शॉप लगाइए लगाइए लगाइए. और इनके अलावा जी हमारे साथ हजार भाई कहते हैं वो इंसान, अच्छा आपने टॉपिक का जवाब दिया है, जबरदस्त हो गया. अच्छा फहीम शेख भाई कहते हैं विसरे सारो लोग शालो न विसरे तू तो के केडो मु सांडियो आहे साह में. वालेकुम अस्सलाम मौलाली सलाम बदर अदा छालाइन खुशायो सफा चाक स्लेट कला मस्जिद अभी असाम यची वया सी थोड़ी देर करे प्रोग्राम तो लाजवाब आए हमेशा जी हां अमा वांगे. अच्छा चलो अच्छी वया देर आए दुरुस्त आए. और आप बताएं डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी मैडम ने यूज करी या फिर नहीं. आप फेस वॉश कब लेने जा रहे हैं. अच्छा ऐसा करें जो नंबर आपको बता रहे ना उनके ऊपर आप रापता कर लिया करें, और नंबर के ऊपर जैसे ही आप रापता करेंगे ना तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा दिया जाएगा. तो अवेलेबल कराइए, आसानियां कीजिए अपने लिए भी, आसपास के लोगों के लिए भी, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जैसा प्रोडक्ट आपने कभी यूज नहीं किया होगा, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है. तो ट्राई करके देखिएगा, मजे आ जाएंगे. अच्छा यासीन कहते हैं शमन जी गाने जो आसरो करिया, बिल्कुल जी कयो कयो शमन हलाइंदा सी जियो करे.

बिल्कुल जी बिल्कुल, पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए और मुझे बताइए जी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है और जी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ कहाँ पर अभी तक अवेलेबल करानी बाकी रहती है। अवेलेबल कराइए, खूबसूरती का ख्याल रखिए मेरी जान, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट आप डिजर्व करते हैं, है ना, तो इस्तेमाल कीजिए। अच्छा यहाँ पर हमारे साथ यासीन कहते हैं, अच्छा तमाम वट मौसम सुठो आहे, बरसात जो इम्कान आहे, चले ठीक है अगर बरसात हो जाए तो एंजॉय कीजिएगा। चाचा कहते हैं मुझे तबियत खराब आहे, मुखे तको फायदो कोन थियो आ। अच्छा टॉपिक हाँ सही सही अच्छा तान जो फायदो न थींदो, बहरहाल उन जो फायदो जरूर थींदो। अच्छा उनके अलावा महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद, कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम आरजे, ग्रेट होस्टिंग मैम, थैंक यू वेरी मच सर, ये आपकी मोहब्बतें हैं जी। अच्छा गुलाम मोहम्मद मरी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, आप ही सिद्रा कैसी हैं आप, शो वेरी नाइस है। रुखसार की सिस हूँ, डॉक्टर कश्यप मरी, ओके कश्यप आपको वेलकम कहते हैं, डॉक्टर साहिबा कैसी हैं, ठीक ठाक है। और कश्यप हमें मीरपुर खास से सुन रही हैं, कश्यप मीरपुर खास में हमने आप लोगों के लिए स्पेशली डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल करा दी है, तो जाइएगा और परचेज कीजिएगा। हाँ कुछ लोग अगर क्रीमों से थोड़ा अवॉइड करते हैं कि हम क्रीमें नहीं लगा पाते हैं, कोई स्किन का इशू है या फिर कोई ऐसे ही, तो आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं। डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये तो भाई इतना कमाल का प्रोडक्ट है कि जब आप यूज करेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि भाई सिद्रा इतना क्यों बताती है। तो डी स्किन का फेस वॉश आप ट्राई करके देखिएगा, यकीन जाने ऐसे प्रोडक्ट आपने कभी नहीं ट्राई करके देखी होगी, इतनी प्रीमियम क्वालिटी की ये प्रोडक्ट्स है, तो यूज कीजिए, ऑल स्किन टाइप के लिए है, ये भी चीज का कोई टेंशन नहीं कि भाई हमारी स्किन सेंसिटिव है नहीं लगा पाएंगे, आप भी लगा पाएंगे क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

आखिर क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि हमने एंजॉय किया। एक और गाना हमारी लिस्ट में है जो कि होने वाला है हमारे फेवरेट सिंगर की आवाज में, पहचान लीजिएगा। अच्छा फहीम भाई, आपने टॉपिक सुना? हाँ सुन लिया होगा। अच्छा हजार भाई कहते हैं भाई ये तो कमाल हो गया डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, वही तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, खूबसूरती में इजाफा हासिल कीजिए।

अच्छा वासु भाई आ चुके हैं मुझे प्यारी भेण कीड़ा हालन खुशायो सफा चाक संगी भली सफा मजे मिता पांजा हाला वाल दियो किथे गुम हुआ हिदायतुल्लाह तमाम भी टॉपिक जो जवाब देनो आए बढ़िया हो गया जी। मीर मोहम्मद बिरोही हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं सदरा मुस्कान, नाइस योर शो, थैंक यू। और नसीम भाई कहते हैं कि सीख ना पाया मैं मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने कई अपने छीन लिए मुझसे अली। ये बहुत बड़ा कमेंट है तो मैं जरा इसको इतना ही रीड करूंगी। चाचा खालिद कहते हैं कि कल जो सवाल पूछा था उसका जवाब बिल्कुल जी बिल्कुल सबने सही जवाब बताया था, इसीलिए शायद मुझे लास्ट में जवाब नहीं बताना पड़ा था। और फरवा कहते हैं आपका शो लाइक और शेयर कर दिया है, बहुत शुक्रिया।

जी आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डीस्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डीस्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए. यासीन कहते हैं कि आपका पुराना डायलॉग आज भी मुझे याद है. जब बोलती थी फर्स्ट क्लास और लस्सी दा गिलास, ये आपका डायलॉग मेरा फेवरेट था. अच्छा ओके. नसीम भाई कहते हैं हमारा सॉन्ग आप प्ले करती नहीं है, 7 दिन से बोल रहा हूँ. अच्छा आज आपका गाना सुनेंगे, टेंशन ना लीजिएगा, टेंशन ना लीजिए, डे स्किन ब्यूटी क्रीम लीजिए.

मुझे स्मार्ट गोपांग हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। हेलो कहते मैं भी आ गया यूनिवर्सिटी से वापस, कंबर सिटी से सुन रहा हूँ। वेरी नाइस वॉइस। टॉपिक आंसर ओके ओके। चलिए आप यहीं पर बैठे रहिएगा, प्रोग्राम सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक, जो कि आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो टाइम हुआ है जरा हम जाते हैं जी न्यूज ब्रेक की जाने, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो वहां से जल्दी आप लोगों के पास आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, यूं जाकर यूं वापस आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट डिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। यूज कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटी
4: गैर जिम्मेवार हरकतों कई 15 सितंबर से आईएनएस कोलकाता खतरनाक अंदाज में रुख तब्दील करे पीएनएस हुनेन से टकराजी हो पीएनएस हुनेन परा बचा जे कोशिश बावजूद भारतीय जहाज से रगड़जण जो वाक्य पेश आयो
5: अड़े अमर सां सजी दुनिया जे मुसलमान जे जज्बन के छियो रसियो आए हुसैन के सऊदी अरब खिलाफ हमला रोकना पवंदा भारत 15 सितंबर ते समुंड में पाकिस्तानी इक्तसादी जोन में जारानी हरकत कई हुई भारतीय कदम खिते जे अमुन लाय खतरो बणजी वया आहिनि सिख यात्रियुनि खे भारत वञण खां रोकण वारियूं ख़बरूं ग़लति आहिनि पाकिस्तान सिर्फ़ वैसाखीअ लाइ 2800 खां वधीक वीज़ा जारी कया करतारपुर राहदारी बि भारत बंदि करे छॾी आहे पाकिस्तान सिख यात्रियुनि जी आजियां करण लाइ तयार आहे अमरीकी सदर ईरान जंग जल्द खत्म करण जी उम्मीद जाहिर करे छॾी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण आहे त ईरान खिलाफ़ जंग पुॼाणीअ ते आहे रॉयटर्स मूजिब ट्रंप जे बयान जे उबतड़ जंग वधीक पखेड़जण जो ख़दशो वधी वियो आहे अमरीकी मीडिया दावा कई आहे त अंगारे गरियल क़ौमनि जी जनरल असेंबली जे इजलास में ट्रंप जे नार वारनि मुल्कनि सां मुलाक़ात जो इम्कान आहे अमेरिकी इख़्तियारनि जे हूसी अॻवाननि सां ओमान में गुझी मुलाक़ात जो इंकशाफ़ बरतानवी ख़बरू इदारे रॉयटर्स दावा कई आहे त गुज़िरियल आचर ते मुसक़त अमेरिकी इख़्तियारनि अमेरिकी सफ़ारतखाने में हूसियुनि जे नुमाइंदनि सां मुलाक़ात कई मुलाक़ात में अमेरिकी पाबंदी जी लिस्ट में शामिल मोहम्मद अब्दुल सलाम में मौजूद हो हूसियुनि जो सऊदी अरब ते यमन में टेली कम्यूनिकेशन टावर्स ते फज़ाई हमलनि जो बि इल्ज़ाम सऊदी अरब पारां हूसियुनि जे इल्ज़ाम बाबति मौक़िफ़ साम्हूं न अची सघियो आहे सिक्योरिटी फोर्सिस जो बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन टे दहशतगर्द मारिजी विया सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि फोर्स जे ज़िले आवरान में कार्रवाई दौरान टे दहशतगर्द जनम बेड़ा कया विया ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां वरी अंग में हथियार हथ कया विया कराची जे इलाइक़े सरजानी टाउन में औरत ऐं संदसि टिनि ॿारनि जे क़तल केस जो जवाबदार गिरफ़्तार डीआईजी इरफान बलोच प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त जवाबदार मक़तूल औरत जे मड़ जो भेणवियो हो ऐं सदन घर ईंदो रहंदो हो जवाबदार औरत सां ज़्यादती करण जी कोशिश कई मज़ामत करण ते जवाबदार पहिरियों माउ ऐं संदसि धीअ खे क़तल कयो बाद में मदरसे मां ईंदड़ ॿिनि ॿारनि खे बि क़तल कयो थुलवे जो वनवा में वेठल नारी मुबैना तौर अगवा एमसी दाख़िल हक भाउ कॉलोनी वासी वनवा में वेठल यतीम नारी मरियम चनो मुबैना तौर अगवा थी वई नारी जे भाउ ज़ाकिर चनो जो चवण आहे त जवाबदारनि मोहम्मद बुड़ो पंहिंजे साथियुनि सां गॾु घर भातियुनि खे जरगमाल बणाए भेण खे अगवा कयो वाके जी एमसी दाख़िल करण बावजूद पुलिस कुझु नाहे कयो इंसाफ़ कयो वञे पुलिस जो चवण आहे त नारी जे मुबैना अगवा जी एमसी दाख़िल कराई वई आहे जांच करियूं पिया उस्ता मोहम्मद में गढ़ी खेरो वासी डॉक्टर जो घर मां गोलियूं लॻल लाश हथ पुलिस जांच लाइ डॉक्टर जी घरवारीअ खे पंहिंजी तहवील में वठी पुछा गाछा शुरू करे छॾी पुलिस जो चवण आहे त डॉक्टर जो मौत क़तल आहे या आपघात जांच बाद ख़बर पवंदी मटियारी में गंबट ऐं शाहपुर चाकर में रोड हादसा औरत समेत टे ॼणा फोत छह ज़ख़्मी मटियारी वेझो मुसाफ़िर को जे टकर में रोड क्रॉस कंदड़ औरत आशी मेंगवाड़ फोत हिकु ज़ख़्मी गंबट लॻ कार जो मोटरसाइकिल सां टकर नेशनल बैंक कोड़ा जो मैनेजर ज़ुल्फ़कार अबड़ो फोत शाहपुर चाकर में पलाल सां भरियल टकर ट्रालीअ खे कार जो टकर लॻण सबबि 23 वरनि जो खेर बख़्श विरोही फोत थी वियो 5 ॼणा ज़ख़्मी ऐं फेसगंज वेझो 3 ॾींहं अॻु गुम थियल लींगर जो फुटिन जे गोदाम मां लाश हथायो आहे घर में कोराम मची वियो आहे जलाल जे चोदगीअ मां गुम थियल 7 वरनि जे सरफराज पुट मुख़्तियार मजीदाणी जो लाश मिलियो आहे वारसनि जो चवण आहे त नींगर जी गुमशुदगी बाद लगातार ॻोल्हा कई पर हथ न आयो अॼु मज़दूरनि ट्राली भरण लाइ फुटियूं कढियूं त नींगर जो फुटिन हेठां दॿियल लाश मिलियो आहे
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़

हाईवे स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओके जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ जरा बातें हो रही हैं, और जरा जो बातें हो रही है ना वो आप लोगों के फायदे के लिए ही हो रही हैं, क्योंकि अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखेंगे, आपको पता नहीं होना चाहिए कि भाई जो जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, आपके चेहरे के लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल होती है। लेकिन अगर एक ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल है मार्केट में जो कि भाई मेडिकेटेड फार्मूला है, आपकी स्किन से रिलेटेड जितने डॉक्टर्स होते हैं ना उन डॉक्टर्स ने मिलकर ये फार्मूला तैयार किया है आपकी खूबसूरती का ख्याल रखने के लिए, आपके चेहरे पर एक अच्छा सा प्रोडक्ट चाहिए इसके लिए और आपके स्किन को हमेशा के लिए महफूज रखने के लिए, तो भाई आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपको अपनी स्किन प्यारी नहीं है? ये जो तरह तरह के प्रोडक्ट्स लगाते हैं ना उनको बाय बाय बोलिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहिए। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है, तो अगर आप क्रीमों से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, वैसे लगानी तो चाहिए, कोई इशू नहीं है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं लगा सकते हैं, कोई मसला है, कोई इशू है, तो आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल जी, तो डी स्किन की अगर फेस वॉश की यहाँ पर बात करते हैं तो डी स्किन का फेस वॉश जो है ना ये इतना जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि पर्सनली अगर आप लोगों के साथ में शेयर करूं तो भाई मुझे ये प्रोडक्ट बड़े कमाल के लगते हैं। आप भी लगाइएगा, जितने जितने मेरे अराउंड जितने भी लोगों ने यूज करे हैं ना उन सब लोगों ने बड़ा अच्छा सा मुझे फीडबैक दिया है और इनका बड़ा पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स मुझे मिला है, तभी जाकर मैं इस चीज पर पहुंची हूँ कि आप सब लोग भी यूज करके देखें डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए कि वाकई भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कितने कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये आप यूज कर सकते हैं हर स्किन के ऊपर, और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये भाई इसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम ऐड किया गया है जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन करने के लिए है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए है। ओके जनाब, सो अगर आप भी अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं या फिर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे एरिया में ये प्रोडक्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये भी बड़ी दिक्कत हो जाती है कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं मिल रहे प्रोडक्ट, जब परचेज करने जाते हैं आपको दुकानदार कहता है कि भाई ये तो प्रोडक्ट नहीं है लेकिन ये ले जाएं, फलां प्रोडक्ट ले जाएं, इसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ऐसा कोई चूना आपको भी लगाए तो आप ऐसा कीजिएगा, उन्हें बोलिए फुल स्टॉप लगाओ, थांबा थांबा भाई साहब, आप बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल कराइए, और जब वो अवेलेबल कराएंगे आप बोलिए हम जब अवेलेबल करा लेंगे ना तब आकर आपसे परचेज कर जाएंगे, तो जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए और जो आपको प्रोग्राम में नंबर्स बताए जाते हैं ना उनके ऊपर रابطہ करते रहिए। ओके जी, तो नंबर्स क्या हैं जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलें, तो नंबर है जनाब 3 1 2 5 0 2 5 9 0 7 3 8 4 3 0 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
वॉश अवेलेबल कराइए और जी उसके बाद जाकर परचेज कीजिए, क्योंकि जब आप परचेज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश कितना ज्यादा जरूरी है। तो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरती को जरा पहचानिए और आपकी खूबसूरती क्या चाहती है आपसे ये आपको पता होना चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी जिंदगी बदल देगा, इतने परफेक्ट प्रोडक्ट है कि ट्राई करेंगे तो अंदाजा लग ही जाएगा। यहाँ पर शमन का गाना लगाया है और यासीन खान को डेडिकेट किया जाएगा ये गाना, उनको भी जिन्होंने शमन के गाने की फरमाइश कर दी थी। और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं वो कौन सा इंसान है जिसे खराब सेहत से फायदा मिलता है।

अच्छा वो सब तो ठीक है, डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई नहीं ये तो बताइए, पोस्ट को लाइक शेयर किया ये तो बताइए। और जी यहाँ पर हम आते हैं जरा आप लोगों के मैसेजेस की जानिब जो कि मुझे पैनल पर रिसीव हुए, और यहाँ पर सबसे पहला जो मैसेज मिला है वो इस्माइल थरपारकर से है। यदि अस्सलाम वालेकुम सिद्रा मैडम, क्या हाल है आपके? शो बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। इतना ही मैसेज क्या या मैसेज आपका मिसिंग पार्ट हो चुका है जरा बताइएगा मुझे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है इस्माइल, आपको वेलकम कहा जाता है। और ये हमारे साथ है डॉक्टर GM बलोच मीरपुर खासे के तेसिस, आपका शो नाइस है, प्ले अर्शद महमूद शाम का एक पहर मेरे नाम करो, क्या बातें लगाते हैं जी। शहजाद अली राजपर हमारे साथ है फ्रॉम बसीरो के थे, अस्सलाम वालेकुम अदी सिद्रा, वेलकम टू शो, अदा तांजो मोहब्बत हुए तांगे प्रोग्राम में चौथा भली करे आया।

नैनीताल का मोरो विलेज. दोनों बहन से शौकत अली बहन हमारे साथ है, नादर अली बहन, अली गुल बहन. आपका शो अच्छा है, सॉन्ग प्ले करें मंजूर, नहीं मास्टर मंजूर का डेडिकेट शाहजेब अली और जी जरियाब और जेन को. चलें सब भाइयों को वेलकम कह दे. बहुत शुक्रिया के साथ आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं. चाचा खाले तमाम गाने जी फरमाइश किया ठीक है, मैं ताजो गानों हलान जी फुल कोशिश करना. और गुल हसन हमारे साथ हैं, गुल हसन निंदवानी, शो वेरी नाइस है आपका. अच्छा कहते हैं बाजी जलाल चोगी का गाना तो सुनाओ अगर. अच्छा यो गानों लिखियो तमा सही से कहते हैं, मेरा बेटा आजाद खान और आमिर खान भी हमारा शो सुन रहे हैं. बहुत शुक्रिया जी भाइयों को वेलकम हो गया. और ये मौजूद है रसूलाबाद खान अबिद हुसैन शम्बानी, वालेकुम अस्सलाम अदीब. वो इंसान बिल्कुल बिल्कुल तमाम सही आयो. बहुत शुक्रिया. मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर हमारे साथ कहते बाजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है. हाओ मीरपुर खास वाला मानो इस्तेमाल कन पया बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाम भी कयो बुधायो किथे किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही है. अच्छा मायरा भी असने प्रोग्राम बुधे पई, मायरा भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करे पई. वाह साईं वाह. फजली हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहती हैं, हैप्पी थर्सडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सिद्रा मुस्कान. कैसी हो स्वीटी? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? कहती हैं सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम और कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को. ओके जी सबको ही वेलकम हो गया. बहुत शुक्रिया फजली आप हमारे साथ हैं. और इसी के साथ साथ गाना मस्त मस्त खत्म हो गया. एक और गाना है जो आप जानते हैं ये गाना मेरा फेवरेट है. अच्छा हिन गाने ते अलाए छो हिकड़ो माण्हू मूंखे चिड़ाईंदो पर ये गानो अलाए छो मूंखे वणंदो आहे. चलो ये गानो ॿुधूं था मुमताज़ मलाई जो काफ़ी टाइम खां वठी गानो असां कोन ॿुधोसीं. सो अॼु ॿुधंदासीं प्रोग्राम आहे जनाब वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो.

0: ओके जी ओके, कोशिश करूंगी सबकी ही फरमाइशें तकरीबन प्रोग्राम में चले, लेकिन आप भी कोशिश कीजिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करें। और स्मार्टू आपने भी फरमाइश कर दी, मैं कोशिश करती हूँ। अनवर भाई कहते हैं कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। कुछ तो हुआ है सर्द मौसम का, आपका मैसेज ऊपर चल रहा गया।
1: सोचे भी न थो सगा, अचानक कदम ही रोके भी न थो सगा।
0: अच्छा हिदायतुल्ला क्या बात है जी, आपको हमारी प्लेलिस्ट पसंद आती है, बहुत बढ़िया। वासु भाई कहते हैं बियो बुधायो वदी, खुश लगा पया आयो, तबियत सेहत सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ता पांजो बुधायो। अच्छा। और आर एन ए आर हमारे साथ है विलेज हाजी खेर मोहम्मद खोखर इमाम बख्श खोखर अंसर तमा दिनो आहे सई आई जी मोहब्बतू ताजो प्रोग्राम बुधो पया।

अच्छा अली मोहम्मद भाई भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको प्रोग्राम पसंद है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी यूज कीजिएगा, आपको वो भी बड़ी अच्छी लगेगी। नसर मोहम्मद भट्टी हमें सुन रहे हैं। नसर मोहम्मद भट्टी भाई कहते हैं आज आतिफ असलम का गाना तो चलाएं, हाजिर टाइम बची हो तो बिल्कुल अलाइंदा सी। और फहीम भा कहते हैं कि दादा मुझको फेस वॉश गिलिफ्टन में नहीं मिल रहा है, और आपको कैसे पता चला? भाई कल आप ही ने तो

आर सी हमारे साथ हैं, हजार भाई, थैंक यू थैंक यू. सिंपल रोमियो में सुन रहे हैं. हेलो अच्छा नसीम गुलामदीन भाई कहते हैं कि जी मिले थी नूरियाबाद में डी स्किन ब्यूटी क्रीम असा तो पूरी गोठ के डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी नहीं आए आई ली जाई बुदा अच्छा प्रिंस ममताज माले आते कहते नूरियाबाद से प्रिंस ममताज पालारी प्रोग्राम तमाम बेहतरीन थैंक यू वेरी मच प्रिंस साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद है और हजार भाई कहते हैं सिस्टर हमारे वर्क का टाइम हो गया चलें जी फिर आप अपना काम कीजिए और यासीन खान कहते हैं कि आपका शो पहली मर्तबा मैंने क्या बात है एग्जैक्ट पूरी डेट के साथ आपको सब पता है हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आपको सब चीजें याद है माशाल्लाह डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी आप परचेज कीजिए तो और फहीम भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है ये भी ठीक है जी और अमीर बख्श भाई हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं थैंक यू सो मच और दिया परी हमारे प्रोग्राम में कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सिद्रा मुस्कान हाउ आर यू और प्लीज प्ले निगत नाज एनी सॉन्ग डेडिकेट हिरा रिमशा एंड डेविल डेविल ओ यानी कि ये बदला पूरा हो गया उन्होंने यहाँ कुछ चुड़ैल बोला आपने डेविल बोल दिया हिसाब बराबर चले निगर जो गाना बधू था हिरा की रिमशा के डेडी की था थोड़ो थोड़ो मुखी भी कयोस तो निगत मुखी भी वणंदी आहे

वरी क्रीम लॻाइण खां पोइ पकी पकी ॻाल्हि आहे, तव्हां बाल ओॾे घुमंदा, छो त हुसन ई तव्हांजे कॾहिं कॾहिं हूंदो, माण्हू तव्हांखां पुछंदा, ॾिसो त हाल अहिवाल त ॾियो, एॾी ख़ूबसूरती काॾां आंदी अथव, हुनखे ॿुधायो बाबा ही टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल आहे, ऐं तव्हां बि टी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए जीअं तव्हां बि सुहिणा सुहिणा थी वञो, पोइ तव्हां बि बाल ओॾे घुमो। अच्छा मुगल उमरानी हमारे सादे भाई को वेलकम हो गया जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा फैसल अहमद हानी आपको भी बहुत शुक्रिया वेलकम। प्रिंस ममताज आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई करके देखिएगा, साबुन तरंदा आयो ना, फेस वॉश तरंदा आयो ना, या फिर मुंह भी कोने धोइंदा आयो। मुंह धो तो डी स्किन जो फेस वॉश लाजमी ट्राई कर जो सही है। और दिया कहती है कि दिया कहती है कि पड़ा ही वास्ता हुसन के दुश्मनों से, अब खरीद के भी नहीं देते जालिम डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ओ तेरी ये तो गड़बड़ी हो गई, अब तेरा क्या होगा कालिया।

अच्छा मुलाजिम भाई, आपको भी वेलकम हो गया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। ओके जी, ओके ओके। अली रजा लगारी कहते हैं गोठ जाम खान लगारी से। अली रजा लगारी सिस्टर आप कैसी हैं? शो तमाम नाई से सॉन्ग का कोई भी अच्छा सॉन्ग का कोई भी अच्छा सा सॉन्ग प्ले करना। ओके जी, सॉन्ग का सॉन्ग प्ले करेंगे। अजहर लगारी और आकिब लगारी, आजम लगारी, अनवर लगारी, मजहर लगारी, अब्बास लगारी, बस क्यों इमाम बख्श खोखर, गुलाम मुस्तफा टालपुर, आरजे बाबू चौहान, ओके रे सबको वेलकम हो गया। अच्छा चाचा कहते हैं भाई गर्मी बहुत है कराची में, डी स्किन ब्यूटी क्रीम कैसे लगाएं? आप रात के टाइम लगाकर सो जाइए। वैसे गर्मी क्यों अभी कराची में ज्यादा है, अब तो खत्म होना चाहिए गर्मी को, क्योंकि इधर तो मौसम ठीक ठाक हो गया है तो उधर भी ठीक होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी।

भाई वो मोलाई का बड़ा पुराना गाना है, सो अच्छा है सुनकर, मतलब मजा आता है, ऐसे बच्चों वाली शायरी लगती है अच्छा लगता है। अच्छा वफा शहजादो मक्सी में सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई। नजर मोहम्मद भट्टी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है। ऐं मां ॾिसां थी कोशिश कंदी तव्हां सभिनी भाउनि फरमाइशूं हलाए वठंदा पर प्रोग्राम एतिरो नंढड़ो आहे, वरी तव्हां सभु भाइर फरमाइशूं कंदा आहियो, पोइ किथे मां पूरी पइजी सघां थी। सो बसि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कयो, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल अञा ताईं कोन थी आहे त अवेलेबल करायो बाबा। अवेलेबल कराइण खां पोइ फौरन बाद वञो भॼंदा वठी अचो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश, यूज करे मूंखे ॿुधायो कीअं लॻो रिज़ल्ट, सोना थिया कोन। अच्छा तव्हां हिते वेहो, हाणे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो टाइम थियो आहे, मां जल्दी मोटी तव्हां ॾे अचां थी, तव्हां काॾे न वञिजो, हिते वेठा हुजो, ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और हसीन हो जाइए।

0: It's 2:30 p.m.
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
6: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي، خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي، او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری۔
7: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تا، پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تو۔ انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو، این پہنجے بارن کے پولیو کھاں بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو، چھو تا یہ قطرہ بارن میں مدافتی طاقت کے ودھائن تھا، این انن جے خوابن کے اڈام رہن تھا۔ پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری۔
8: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
9: अस्सलाम वालेकुम अदा
10: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
9: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
10: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
9: न अदा
11: यार आजकल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
9: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
10: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
9: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
11: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
10: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
12: 03013992836
13: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94

ओके जी, दिल दर्शन कान चरिया नाडो वीआईपी गानो असाइन जो है क्यों प्यार बिल्कुल जी प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहां पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ही चाहते हैं कि भाई हमारी खूबसूरती हमें मिल नहीं रही है, बहुत ज्यादा टोटके ट्राई किए हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगा के देखे लेकिन फर्क कोई भी नहीं है, तो भाई आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके देखिए। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जितनी भी मैं बातें बताती हूँ ना, वो सारी बातें बिल्कुल सच्ची, अगर आप परचेज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई सिदरा बाजी जेको बुधायो सब सही बुधायो है। सो तवा भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा करीबी जनरल स्टोर से अगर अना तीन अवेलेबल कोन थी है तो सब का पेरी तो तुम करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो, उन इस्तेमाल करो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को जब आप यूज करेंगे ना, तो ये चीज तो आप जहन में रख लें कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी ऑल स्किन टाइप के लिए है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स है, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फार्बोटीन है, कोचिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें एड की गई है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर, तब जाकर आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बना है जो कि आपकी खूबसूरती में इजाफा लाएगा, आपकी खूबसूरती का ख्याल रखेगा और आपको हमेशा के लिए प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर गोरा गोरा बना देगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को चाहे आप मर्द हज़रात हैं, चाहे आप ख्वातीन हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए जनाब ये चीज भी आप लोगों को बता दें चलो कि ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का मैं जिक्र करती हूँ ना, तो पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट के बारे में, अगर आप ऐसे मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन एड की गई है। यानी कि इसका मतलब ये बनता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तो भाई मतलब मजे ही हो जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, और ये इतना पॉपुलर प्रोडक्ट है कि पाकिस्तान में तो मिल ही मिल सकता है लेकिन आपको ये बाहर के ममालकात में भी मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और साथ में आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और डी स्किन का फेस वॉश भी ट्राई करते जाइए, क्योंकि खूबसूरती आप हासिल करना चाहते हैं आई नो, तो अगर आपके पास अच्छे वाले प्रोडक्ट होंगे तो ज्यादा आप और अच्छे तरीके से खूबसूरती हासिल कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, चाहे आप मर्द हज़रात हैं, चाहे आप खवातीन हैं। हाँ जी, गाना बड़ा पसंद आया, बड़ा अच्छा गाना था। और इसी के साथ साथ जो भी नंबर आपको बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर, उनके ऊपर राता रखा करें ताकि आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाएं और हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए। ओके, सो प्रोग्राम की लास्ट लिंक में हम आ चुके हैं। वक्त बड़ा तेजी से गुजरता जा रहा है, मुकाबला बढ़ा सकते तो जरा आपके मैसेजेस की जानब भी आ जाते हैं।

कसम नडे कसम अच्छा ये हमारे साथ जी मौजूद हैं मीरपुर खास से अब्दुल्ला भाई. आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करें, क्या बात है, बढ़िया यूज करते रहिए. महबूब अली हमें सुन रहे हैं मोरो सिटी से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिद्रा मुस्कान. वालेकुम अस्सलाम जी. अली हमारे साथ है मोरो से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम अली. और हमारे साथ है गोट हाची गुलाम खास के लिए, लखझंडो मरी खां कुर्बान खास के लिए, अदा असा जबलन में शो बुधूं पया. वाह साई वाह, जबलन में भी असांजा माण्हू शो बुधन पया. जियो करे डी स्किन क्रीम जबलन में भी अवेलेबल कराए सको था. जेके नंबर तांके बुधाया पई, बस वे डायल कजो, कॉल या फिर मैसेज कर अदे के चाहे जो अदा असन जबलन में भी चाहे था डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले. जिन जबल वाला मानू भी लगन बाबा उन्हें डो कयो जा. आई ता सब डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कयो, अवेलेबल करायो, ऐ सोना सोना थी वणो. अच्छा ये हमारे साथ है सज्जन माशी एंड शफीक साहब की गोठ जान मोहम्मद माशी मोरो का तवा सके जॉइन कयो है. सुबह जो मबदुआन प्रोग्राम बदु पया. अली रजा में सुन रहे हैं मोरो से, कहते कैसी हो सिद्रा मुस्कान. आपका शो नाइस है, थैंक यू वेरी मच. मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी, आप बताएं कैसे हैं. और मोरो वाले लोगों का क्या कहना भाई, इतने एक साथ ही मैसेज कर दिए मोरो के लोगों ने. अब ये तो बताएं मोरो में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है नहीं, क्योंकि मोरो में मुझे लग रहा है कि मिल रही है. तो आप जरा जाइएगा और परचेज करके आइएगा, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. अच्छा ये गाना आतिफ असलम की आवाज में है, तो जिन्होंने बोला कि आतिफ का गाना सुनाएं उनको डेडिकेट जाता है.

0: भी जी क्या बात है। और यहाँ पर वासु भाई में सुन रहे प्रोग्राम भल्ला हल्दा पयदी, थैंक यू वेरी मच भाजू मोबितुआ है। और यासीन कहती है आपका शो पूरी दुनिया में छा गया है, जय बुधा कसम दिया तो खबर ही गुनू ऐसा पेरी लिंक वाला कॉमेंट तमु पेरी लिंक में ही खत्म करे चढ़िया हुआ। हाँ अभी लिंक वारन में थोड़ी देर थी वही हूँ। अच्छा मुजाहिद मलिक हमारे साथ कहते हैं हाई सिडो घोटकी में मिल रही है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, मैं यूज कर रहा हूँ, चमकाए छो आई ली मारे छे वाला अड़ा फीडबैक दींदा कयो बुधाईंदा कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाईंदा है खबर पे बाबा ये जगह सोना मानो घूमन पया ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएन पया। ओके जी हिदायत ला कहते बिल्कुल सिदरा
1: तड़प रहा है जाने को
0: मत करें अच्छा फहीम भाई जो बाह लोड़ी घुमंदो आए मुखे खबर ना अला उनके छा चंदा है आई एम मासूम मणु नन्ना मुन राई देश का सिपाही हिदायतुल्ला वो बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें। दर्द दिल कहती नाइस शो पर माय मूड ऑफ व्हाई क्या हो गया आपको। और जी हमारे साथ ही हजार भाई आपको प्रोग्राम पसंद आया बहुत शुक्रिया। और चाचा के बारे में फहीम कहते हैं कि सर दिन रात एसी में होते हैं फिर भी सर को गर्मी हो रही है कराची में, वही मैं सोच रही थी वड्डे लोग थे वड्डियां गलो ये तो आपने सुना ही होगा तो बस वो सीना

स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं बताइए, और यहाँ पर वफा शहजाद और मक्सी हमारे साथ है, कहते प्रोग्राम पसंद आए, थैंक यू डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बुधाइंदा कहो। और राशिद नहीं रशीद खोसो हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई, आप हमें हैदराबाद से सुन रहे हैं, थैंक यू जी थैंक यू। और अच्छा फरवा कहती है हर दिल जो प्यार करेगा। अच्छा वफा मीर खान मुगेरी भाई हमारे साथ है, कहते हैं तोसा मिलण जो हसरतूं अञा भी अधूरियूं आहिनि, सोना साईं उम्मीद आहे ज़िंदगीअ जे कंहिं मोड़ ते मिलंदासीं। अदीम अली मुगेरी, उस्ताद मोहम्मद अयूब सोलंगी, वफ़ा मीर खान मुगेरी फ्राम यार मोहम्मद कॉलोनी। कोई सॉन्ग मास्टर मंजूर जो हलाइजो, मां कोशिशि कयां थी तव्हांजो, मां ॿुधो आहे प्रोग्राम ॿुधो पिया।

क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाना। और साजिद कहते हैं कि सऊदी अरब खां मेरे चाचा कमरदीन भुट्टो भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। चाचा के चौं था पापा मोहब्बत हुआ चाचा तां सुनो प्रोग्राम बुधो पया। उन खां अलावा वासु भाई कहते हैं अदी सिडो थाने गुमना थींदा इंशाल्लाह 20 सितंबर खां बाद हर रोज तां जे प्रोग्राम में हाजिर थींदा। ओके भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐं असां चुप करे वेही रहियासीं पर चुप करे वेहण न घुर्जे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करणु घुर्जे। तव्हां छा सम्झो हुयो, उल्टो सुल्टो मशरो थोरी ॾींदमि तव्हांखे।

जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के दावन से ये प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा और इस्तेमाल अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो मुझे बताइए, ताकि हमें पता चले कि ये जो इतने खूबसूरत से लोग हैं वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं। अच्छा वफा मीर खान मुगेरी भात आज मोहबतू आइन असां बिल्कुल ठीक ठाक आयूं, तव्हां भाइरनि जो दुआऊं खपनि। हाँ फहीम भाई, पता नहीं क्या इशू है शाम वाले प्रोग्राम के साथ, वो पोस्ट उसकी जरा रुकती ही नहीं है, थमती ही नहीं है। और जी अख्तियार अली सिंधी भाई हमें सुन रहे हैं, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं, आपको वेलकम कहा जाता है। हजार भाई कहते हैं ओ कल जुम्मा है इसीलिए आप इतनी हैप्पी हैं, अब समझा। एग्जैक्टली सही पहचाना।

अखलाक भाई भी प्रोग्राम में आ चुके हैं। नाइस यो, थैंक यू वेरी मच प्यारा भा। और हक खान मुल्तानी हमारे साथ हैं। भाई तुम्हारे डायस्टी का शो तुम मोकिले ना साडे थोड़ो रहम कयो बाबा, मानो जा कमेंट मते भजी वेंदा और दाऊं कना मानू स्टिकर इतना न मोकलींदा कयो पोस्टी सरी भरे सरी थव दिल में अरमान रहे आईली कोटनी कोन था। अच्छा अली रज़ा लगारी भाई असा के बुधन पया। जी जी बिल्कुल तांचो मोहब्बत वान ता प्रोग्राम बुधु पया। अच्छा वरी वफा अब्दुल वहीद जतोई भी अची वयान जी स्टिकर खणी करे हेडा सारा स्टिकर तमा खणी आया छो बाबा खैर ताए वीसी खुली तव छा।

0: ही रहे।
1: हाँ भाई करे भी छा प्या सकूं। अच्छा गाना था, इंजॉय किया हमने। और ये हमारे प्रोग्राम का लास्ट ब्रेक होने वाला है, ये बस मेरी चॉइस पर गाना चलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करते रहिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला प्रोडक्ट है, तो ट्राई करके देखिए, मजे ना आए तो कहिएगा जरा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बता दिया करें, ताकि हमारे सुनने वालों को पता चले कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाकई कितनी अच्छी प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ

0: हाँ जी
1: ये दुख नहीं दुख है हमें क्यों याद है
0: जी बिल्कुल दुख इस बात का है कि क्यों याद है और जरा कुछ हमारे पास मौजूद है हम जरा अर्ज करेंगे आप सुनिएगा वो कहते हैं ना कि अगर मैं खुद से ही थक जाऊं तो कहां जाऊं अगर मैं खुद से ही थक जाऊं तो कहां जाऊं जब मेरा अपना वजूद ही मेरे लिए बोझ बन जाए तो बताओ जरा मैं कहां जाऊं कभी दिल चाहता है सबसे दूर किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां मेरी खामोशी को भी कोई सुन ना पाए और कोई सवाल भी ना कर सके मगर इंसान दुनिया से तो भाग सकता है अपने अंदर के शोर से नहीं भाग सकता मैंने बहुत लोगों में सुकून ढूंढा मगर हर बार खुद को पहले से ज्यादा तन्हा पाया काश कोई ऐसा शख्स मिले जो मेरी खामोशी पढ़ ले और मुझे कुछ कहे बगैर समझ ले अब ना किसी से शिकवा करने को दिल चाहता है ना अपनी कैफियत बयां करने को अल्फाज मिलते हैं बस कभी कभी दिल चाहता है कि कोई पास बैठे और कहे तुम्हें सब अकेला क्यों छोड़ जाते हैं और तुम्हें सब अकेला ही क्यों सहना पड़ जाता है शायद थक जाने के बाद इंसान को रास्ता नहीं सिर्फ एक मुखलिस कांधा चाहिए होता है और अगर वो भी ना मिले तो इंसान खामोशी से अपने ही अंदर कहीं गुम होता चला जाता है किसी ऐसे रास्ते पर जहाँ शायद उसे कोई ना ढूंढ पाए और शायद वो कभी खुद को भी ना ढूंढ पाए

बाकी जुड़ेसी के साथ यहाँ पर लेते हैं आप लोगों से इजाजत वरी तमाम से मुलाकात मुझे थे पई पंच बजे वाली प्रोग्राम में उधर नवेसारी दा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो इस्तेमाल करण भी नवेसारी दा ठीक है सो पांजो ओ हिडो सरो ख्याल रखना किते का गलती थी उजे त माजरत कयो था कि जो को फीडबैक रहजी वयो आ को गानोडो शानोडो रहजी वयो त बाबा माजरत कयो था मोकलानी नाही सेन सलामत सलामत अल्लाह हाफिज बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक

सिंध में 25 एकड़न जी एराजी ताईं कणक पोखींदड़ आबादगार सब्सिडी पैकेज लाइ अहलकरार फोका खुराक खाते के कणक फराम कंदड़ हारिन खे वाधू सब्सिडी मिलंदी। सिंध काबिन आबादगारनि लाइ कणक ते सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। खुराक खाते मिलंदी। सिंध काबिन आबादगारनि लाइ कणक ते सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। खुराक खाते खे कणक फराम कंदड़ हारिन लाइ सब्सिडी 1000 मां वधाए 2000 रुपया फी मण कई वई आहे। वॾे वज़ीर जी सारत हेठि काबिना जे इजलास में 25 एकड़नि ताईं ज़मीन रखंदड़ हारिन जी नई रजिस्ट्रेशन खोलण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त कणक जे आबादगारनि जी नई रजिस्ट्रेशन जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़रिए कई वेंदी। DAP भाण पा या मंज़ूर थियल मुतबादल भाण ख़रीद कंदड़ अहल हारिन खे हिक जहिड़ी सब्सिडी ॾिनी वञे। इजलास खे ब्रीफिंग ॾिनी वई। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराक़ची ऐं फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर विच में फोन ते तुर्किया जे परदेही वज़ीर सां बि राब्तो कयो। अब्बास इराक़ची चयो आहे त ईरान अवाम जे हक़नि ऐं मुफ़ाद वज़ीर सां बि राब्तो कयो। अब्बास इराक़ची चयो आहे त ईरान अवाम जे हक़नि ऐं मुफ़ादनि जी ज़मानत ॾींदड़ आहे त इलाक़ाई चिकताण यमन रडसी लाइन ताईं पहुचे। सभई धुरियूं सूरत हाल खे वधीक मुंझाइण खां पासो कनि ऐं मसला ॻाल्हियुनि ज़रिए हल कनि। चीनी परडेही जी बीजिंग में ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराक़ची सां मुलाकात। वांग जी चयो आहे त चीन आलमी चिकताण ख़त्म करण में तामीरी किरदार अदा करण लाइ तयार आहे। सभई धुरियूं आबना अरमुज़ खोलण लाइ कदम खणनि। ईरान ऐं अमेरिका जल्द खां जल्द इस्लामाबाद मुफ़ामती जादास तरफ़ अचनि। पाकिस्तान पारां मके जे तहफ़ुज़ लाइ सऊदी अरब जो साथ ॾियण जो अज़म। परडेही तर्जुमान सजाद हैदर प्रेस ब्रीफिंग में चयो त मके खे निशानो बणाइण शर्मनाक अमल आहे। अहिड़े अमल सां सॼी दुनिया जे मुस्लमाननि जे जज़्बनि खे चयो रसियो आहे। हुसैन खे सऊदी अरब ख़िलाफ़ हमला रोकणा पवंदा। 15 सेप्टेम्बर ते समुंड में पाकिस्तानी इक़्तिसादी ज़ोन में जारानी कई हुई। भारतीय कदम खिते जे अमुन लाइ ख़तरो बणजी विया आहिनि। सिख यात्रियुनि खे भारत वञण खां रोकण वारियूं ख़बरूं ग़लति आहिनि। पाकिस्तान सिर्फ़ वैसाखीअ लाइ 2800 खां वधीक वीज़ा जारी कया। करतारपुर राहदारी ॿिए भारत बंदि करे छॾी आहे। पाकिस्तान सिख यात्रियुनि जी आजियां करण लाइ तयार आहे। अमरीकी सदर ईरान जंग जल्द ख़त्म करण जी उमीद ज़ाहिर करे छॾी आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण आहे त ईरान जंग ख़िलाफ़ पुॼाणीअ ते आहे। रॉयटर्स मूजिब ट्रंप जे बयान जी उबतड़ जंग वधीक पखिड़जनि जो ख़दशो वधी वियो आहे। अमरीकी मीडिया दावा कई आहे त अंगारे ते गॾियल क़ौमनि जे जनरल असेंबली जे इजलास में ट्रंप जे नार वारनि मुल्कनि जे अॻवाननि सां मुलाक़ात जो इम्कान आहे। अमरीकी इख़्तियारनि जे हुसी अॻवाननि सां ओमान में गुज़िरियल मुलाक़ात जो इंकशाफ़। बरतानवी ख़बरू इदारे रॉयटर्स दावा कई आहे त गुज़िरियल आचर ते अमरीकी इख़्तियारनि अमरीकी सफ़ारतखाने में हुसैन जे नुमाइंदनि सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात में अमरीकी पाबंदी जी लिस्ट में शामिल मोहम्मद अब्दुल सलाम बि मौजूद हो। हुसैन जे सऊदी इतिहाद यमन में टेली कम्यूनिकेशन टावर्स ते फिज़ाई हमलनि जो बि इल्ज़ाम। सऊदी अरब पारां हुसैन जे इल्ज़ाम बाबति मौक़िफ़ साम्हूं न अची सघियो आहे। मीर रज़ा केस जी जांच लाइ क़ाइम अदालती कमीशन आॾो संदसि वेझो दोस्त अहमद पेश बयान दौरान मीर रज़ा जो वालिद रोई पियो। कमीशन पारां मीर रज़ा जे वारसनि सां उकलाए में अकेलाईअ में मुलाक़ात जी तजवीज़। वकीलनि खे मुलाक़ात में शामिल थियण खां रोके छॾियो। अहमद जे वकील मीडिया में चयो आहे त मीर रज़ा ऐं अहमद पाण में घाटा दोस्त हुआ। मीर रज़ा जे वालिद अहमद लाइ चयो त हू हुननि लाइ मीर रज़ा आहे। अहमद अॼु या सुभाणे मीर रज़ा जे ख़ानदान सां मुलाक़ात कंदो। अदालती कमीशन जा क्राइम सीन महफ़ूज़ न हुजण ते सवाल नर्सरी जे अमले खां कयल पुछा ॻाछा नाकाफ़ी करार। सिक्योरिटी गार्ड जे हथियार बाबति बि पुछा ॻाछा। सिक्योरिटी फोर्सिस जो बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन 3 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रिए फोर्स जे ज़िले आवरान में कार्रवाई दौरान 3 दहशतगर्द जहनुम भेड़ा कया विया। ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां वरी अंग में हथियार हथ कया विया आहिनि। कराची जे इलाइक़े सरजानी टाउन में औरत ऐं संदसि टिनि ॿारनि जे क़तल जवाबदार गिरफ़्तार। DIG इरफान बलोच प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त जवाबदारनि मक़तूलनि औरत जे मुड़ुस जो भेणवियो हो ऐं संदन घर ईंदो रहंदो हो। जवाबदार औरत सां ज़्यादती करण जी कोशिश कई। मज़ामत करण ते जवाबदार पहिरियों माउ ऐं संदसि धीअ खे क़तल कयो। बाद में मदरसे मां ईंदड़ ॿिनि ॿारनि खे बि क़तल कयो।

0: असली चीजां चारों मसालों जी सुन्याण पर ट्रेडमार्क नंबर चोटीह 2000 डीसी करे खरीद कंदा जीजान चारों मसालो ढोर जो हाजमो दुरुस्त जीजान चारों मसालो ढोर सेहतमंद जीजान चारों मसालो जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर का नालो वठी खरीद करियो।
1: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्ने के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000 3105109 03000 3105109।
0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते दे लाए 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद ठरी रोड मेहरापुर 03000338569।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा vitamins और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके minerals स्किन में fully absorb हो जाएं, स्किन को fair और fresh बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, glowing skin का राज। A product of Biocon International Pakistan।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
2: न अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी
1: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी आहे
2: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकचे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जे फोन ते राबतो के तेजी सूरत हाल ते गालियों ईरानी मीडिया मौजूद अब्बास इराकची तुर्क के परदेही वजीर सा राबतो कयो है. अब्बास इराकची चयो है ईरान आवाम जे हकन ने मुफादन जी जमानत रींदर सफारती हल जी आजियां करे तो चीन नथो चाहे तो इलाकई छिटाण यमन रेड सी तई पहुंचे सभी धुरियों सूरतहाल के मुझाण का पासो कन मसला गाल जरिए हल कन. चीनी परदेही वजीर जी बेजिंग में ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची से मुलाकात. वांग ची है चीन आलमी छिटाण खत्म करण में तामीरी किरदार अदा करण तैयार है. सभी धुरियों अबनार मुस्कोरण कदम खड़न. ईरान ए अमेरिका जल्द का जल्द इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त नामे तरफ अचन. पाकिस्तान पारा मके के तहफुज ला सऊदी अरब जो साथ रण जो अजम परदेही तर्जुमान सजाद हैदर प्रेस ब्रीफिंग में चयो तो मके के निशानो बणाए शर्मनाक अमल है. अड़े अमल से सजी दुनिया के मुसलमान के जज्बन के चियो रसो है. हुसैन के सऊदी अरब खिलाफ हमला रोकना पवंदा. भारत 15 सितंबर ते समुंड में पाकिस्तान इक्तसादी जोन में जारानी हरकत कई हुई. भारतीय कदम खिते के अमुल ला खतरो बणजी विया आहिनि. सिख यात्रियों के भारत वञण का रोकण वारियूं खबरूं गलत आहिनि. पाकिस्तान सिर्फ वैसाखी लाइ 2800 का वधीक वीजा जारी कया. करतारपुर राहदारी भी भारत बंद कर छी है. पाकिस्तान सिख यात्रियों की आजियां करण लाइ तैयार है. मीर रजा केस की जांच लाइ कायम अदालती कमीशन आडो संदस वेझो दोस्त अहमद बयान दौरान मीर रजा जो वालिद रोई पयो. कमीशन पारा मीर रजा के वारसन से अकेलाई में मुलाकात की तजवीज. वकीलन के मुलाकात में शामिल थियण का रोके छो. अहमद के वकील मीडिया से गालाइंदे है तो मीर रजा अहमद पान में घाटा दोस्त आ. मीर रजा के वालिद अहमद लाइ हो तो उन मीर रजा है. अहमद अज सुभा मीर रजा के खानदान से मुलाकात कद. अदालती कमीशन जा क्राइम सीन महफूज न होजण ते सवाल. नर्सरी के अमले का कयल पुछा गाछा नाकाफी करार. सिक्योरिटी गार्ड के हथियार बाबत भी पुछा गाछा. सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक में ऑपरेशन टे दहशतगर्द मारजी वया. सिक्योरिटी जरिए मौजूद फोर्स के जिले आवरान में कार्रवाई दौरान टे दहशतगर्द जहन भेड़ा क्या वया. ऑपरेशन दौरान दहशतगर्द के कब्जे में वे अंग में हथियार हथ क्या वह. कराची के सरजानी टाउन में औरत संदस टिन बार कत्ल. संदन वेझो अजीज निकतो. पुलिस खेस गिरफ्तार करे वरतो. डीआईजी ओला इरफान बलोच प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे गिरफ्तार जवाबदार मोहम्मद हुमायूं नारी मेविस सा ज्यादती की कोशिश कई मजामत करण ते खेस कतल कयो. 18 महीने की बाड़ी रुनीत खेस भित सा टकरू हणी कतल कयो. बार ट्यूशन ता मोटिया तो उन्हें भी कतल करण बाद जवाबदार घर के साफ कयो. सरियो भी धोतो जै बाद फरार थो. चौकीदार जे घर वारी जवाबदार हुमायूं के मेविश के घर वींदे जवाबदार बीहर सागे इलाके में आयो हो. संदस सुणप थी जवाबदार वाके के फुरजो रंग डेण की भी कोशिश कई. जवाबदार मकतूल औरत के मुड़स जो भेणवियो है. केस में दहशतगर्दी जो कलम लगाने जो फैसलो कयो है सूबाई गुरु वजीर पारा. जवाबदार की गिरफ्तारी ते पुलिस के शाबाश.
2: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज.

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था। पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और की महासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 03008-5569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा।
6: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: सोनी अज त डाढी खुश थी लगे।
1: हाँ साईं गाल भी एड़ी आहे।
0: भला मुखे भी बुधाए केड़ी गाल आहे।
1: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
0: छा छा?
1: उहे पंहिंजे ढोरन खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। हीअ चारो ढोरन जो हाज़मो दुरुस्त करे थो। ढोर सेहतमंद थियन था। गोश्त सां गॾो गॾु खीर भी वधे थो।
0: वाह सोनी वाह वाह जी गाल बुधाई। पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
1: साईं रेडीअ ते था ॿुधाइनि। ॿुध।

0: अजी वठी अच।
1: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
0: हा साईं हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन बाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
4: हर बार जा नंदड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बारन के पोलियो का बचाओ जब कतरा जरूर प्यारो. छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था. पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी.
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है. सुनते रहो GFM 94.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध काबीना आबादकारन लाइ कणक ते सब्सिडी पैकेज जी मंजूरी ॾेई छॾी। कणक फ्राहम कंदड़ हारियुनि लाइ सब्सिडी 1,000 मां वधाए 2,000 रुपया फी मण कई वई। वरी वज़ीर जी सदारत हेठि काबीना जे इजलास में 25 एकड़नि ताईं ज़मीन रखंदड़ हारियुनि जी नई रजिस्ट्रेशन खोलण जो फ़ैसिलो। सूबे में मिल्कियतनि खे डिजिटलाइज़ करण ऐं स्पोर्ट्स पॉलिसी जी मंज़ूरी। काबीना पारां एडवांस कलेक्शन टैक्स ॿीहर उगाइण जो बि फ़ैसिलो। सिंध हुकूमत कणक ख़रीदारी में नाकामी जो इतराफ़ करे वरितो। कणक वारे मामले ते पंजाब मथां ज़्यादतीअ जो बि इल्ज़ाम। सिंध काबीना जे इजलास बाद ब्रीफिंग ॾींदे ख़ुराक वारे वज़ीर मख़दूम महबूब ज़मान चयो त असां कणक जी ख़रीदारी
2: आहियूं,
1: पंजाब टिन्ही सूबनि सां ज़्यादती करे रहियो आहे। सिंध जी कणक पंजाब वई ऐं पंजाब सिंध लाइ वरी पंहिंजो बार्डर बंदि रखियो। असां 2,500 रुपियनि जे सपोर्ट प्राइस वारे निज़ाम मां निकिरी चुका आहियूं। हाणे असां पंहिंजो सपोर्ट प्रोग्राम आणींदासीं। मोहम्मद बख्श मेहर चयो त सिंध में कणक जी पोख घटि थींदी पई वञे। हिन भेरे बि असांखे ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियणो पियो। वधीक 2,50,000 आबादकारनि खे रजिस्टर्ड कंदासीं ऐं आबादकारनि खे मज़बूत बणाईंदासीं। जाम ख़ान शोरो चयो त 2025 में जेकॾहिं गोदामनि में कणक मौजूदु न हुजे हा त सिंध में अटे जो वॾो बुहरान पैदा थिए हा।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाइ खुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
6: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836
3: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: 5:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Har bar ja nandra kadam ek nayi duniya da vadhan ta par polio inan kadman ke roke bhi sage tho. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर पियारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत और जवाबित लागू हैं
3: धर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी खुदा पोलियो रंस दा कदमुना उद्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी द्वसास की वरकवल महेरवई زکه هم دغه ساس کی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله مازوري
4: اپنا شهر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: होम डिलीवरी सर्विसेज के भी बंदिश का छूट 10 महीने लाइ पहले सरकारी दौरान ऐसे सफर ते मुकम्मल पाबंदी लागू जरूरत पवण ते वजीर सलाहकार ऐसे सरकारी ऑफिसर इकोनॉमी क्लास में सफर करना सरकारी आजियाणन ते भी पाबंदी हुकूमत जे खर्च ते को प्रोग्राम न थींदो 50% सरकारी गाड़ी ग्राउंड थी दियो सरकारी गाड़ियन लाइ तेल जी फ्रामी भी घटताई रिलीफ पैकेज से हुकूमत ए पेट्रोलियम डीलर्स विच में गालियों कामयाब इस्लामाबाद में गर्जानी दौरान बिनी धुरियन विच में मामला तय थी गया डीलर्स के स्टेट बैंक जरिए 48 कलाक अंदर अकाउंट्स में रकम मुंतकिल करते तफाक पेट्रोलियम वारे वजीर पारा आइंदा स्टेक होल्डर सा मुशावरत जो अमल वधिक बेहतर बनाने की खातरी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो चवण है तो हुकूमत अदायगियन के तरीकेकार जो नोटिफिकेशन जल्द जारी करी फ्यूल रिलीफ पैकेज से अमल शुरू किया सिंध में 25 एकड़ की एराजी तई कणक पोखींदड़ आबादकार सब्सिडी पैकेज लाइ अहल करार खुराक खाते के कणक फराहम कंदड़ हारियन के वादू सब्सिडी मिलंदी ज़रात वारे वसी की अगवाणी में आबादकारन लाइ कमेटी भी कायम सिंध काबीना आबादकारन लाइ कणक ते सब्सिडी पैकेज की मंजूरी डेई छी कणक फराहम कंदड़ हारियन लाइ सब्सिडी 1000 मां वधाए 2000 रुपया फी मण कई वई वाले वजीर की सदारत हेठ काबीना के इजलास 25 एकड़ तीन जमीन रखंदड़ आर्यन की नई रजिस्ट्रेशन खोलने जो फैसलो सूबे में मिल्कियतन के डिजिटलाइज करण ए स्पोर्ट्स पॉलिसी की मंजूरी काबीना पारा एडवांस कलेक्शन टैक्स बीहर उगाण जो भी फैसलो सिंध हुकूमत कणक खरीदारी में नाकामी जो इतराफ़ करे वरतो कणक वारे मामले ते पंजाब मथा ज्यादती जो इल्ज़ाम सिंध काबीना के इजलास में ब्रीफिंग बाद डींदे खुराक वारे वसीर मख्तूम महबूब जमान चयो आहे त असां कणक जी खरीदारी में नाकाम थिया आहियूं पंजाब टिन्ही सूबनि सां ज्यादती करे रहियो आहे सिंध जी कणक पंजाब वई ऐं पंजाब सिंध लाइ वरी पंहिंजो ऑर्डर बंदि रखियो असां 3500 रुपियनि जे सपोर्ट प्राइस वारे निज़ाम मां निकिरी चुका आहियूं हाणे असां पंहिंजो सपोर्ट प्रोग्राम आणींदासीं मोहम्मद बख्श पैर चयो त सिंध में कणक जी पोख घटि थींदी पई वञे हिन भेरे बि असांखे रुपियनि खे मुंहुं ॾियणो पियो वधीक 2.5 लख आबादकारनि खे रजिस्टर कंदासीं ऐं आबादकारनि खे मज़बूत बणाईंदासीं जाम ख़ान छोरो चयो त 2025 में जेकॾहिं गोदामनि में कणक मौजूदु न हुजे हा त सिंध में अटे जो वॾो बोहरान पैदा थिए हा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर सां ईरान जे परडे॒ही वज़ीर अब्बास राक्षी जो टेलीफोनिक राब्तो ख़ते जी सूरतहाल इलाक़ाई अखबराई ऐं गॾियल दिलचस्पी वारनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल ईरानी ख़बर एजेंसी मूजिबि अब्बास राक्षी जो फील्ड मार्शल सां फोन ते राब्तो चीन जे दौरे दौरान थियो अब्बास राक्षी जो बीजिंग जे दौरे दौरान तुर्क हमन सभु सां बि फोन ते राब्तो अब्बास राक्षी चयो आहे त बीजिंग में चीनी अख़बारनि सां कामयाब मुशावरत थी सदर शी जिनपिंग जो अमन बाबति बयान अहम हैसियत रखे थो पाकिस्तान मक्का मुआहदे जो पाबंद आहे ऐं सऊदी अरब सां कुलो कुले में विलाए बीठल आहे वॾे तर्जुमान पारां सऊदी अरब में हुसी हमलनि जी मज़म्मत हमला नाकाम बणाइण ते सऊदी जी हथियारबंद फ़ौज जी सारा वॾे तर्जुमान चयो आहे त पाकिस्तान हुसी हमलनि खां पोइ पैदा थींदड़ सूरतहाल खे ॾिसी रहियो आहे बाबुल मुंदिब जी सूरतहाल ते बि घटी आहे वॾे तर्जुमान ओमान जी साहिली पटी ते हिकु जहाज़ मथां हमले दौरान हिकु पाकिस्तानी जे गुम थियण जी तस्दीक बि करे छॾी जहाज से तनकीद थी रही है यो जहाज मुझो जाती नफर वजीर अला पंजाब जो है चैनी वरन वजीर वट जहाज आन तनकीद रुगो मुंह मथा थे पे ये जी ग्रेजुएशन तकरीब में वजन ते भी तनकीद थी सभी के बुधा चाहें थी जहाज ते जेको 2.25 करोड़ रुपया खर्च आयो यो पेंजे खीसे मां भरियो मरियम नवाज सुल्तान में तकरीब का खिताब मरियम नवाज जो चवण आए के भी मां कुछ मानू पंजाब ते हमलो करण आया पंजाब की अवाम इन रद्द कर पान मुरादो हवा जो जामो रचाया
2: सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109, 03000 3105109।
4: मालवन भारन लाए खुशखबरी, 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो, जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए, अम्हां के खुशहाल बनाए, हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब है।
5: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, 9 मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जै में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372-02424601000।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा।
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836।

ऐं अव्हां सभु ॿुधी रहिया आहियो जी एफ एम 94 जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि। जीअं त लिसनर्स, अल्लाह पाक जूं हज़ारे नेमतूं असां वटि मौजूदु आहिनि, पर उन्हनि मां सभु खां वॾी नेमत सिहत आहे। जॾहिं तंदुरुस्ती हुजे थी, तॾहिं ज़िंदगी जो हर लम्हो ख़ूबसूरत ऐं बावफ़ा लॻंदो आहे। प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में असांजे स्टूडियो में मौजूदु हूंदा आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमूर साहब, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि।

0: तव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851 0301-2196-851। सभु खां पहिरीं त असां डॉक्टर साहब खे पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ुश आमदी चवंदासीं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: डॉक्टर साहब कीअं आहियो? तबियत सभु ठीकु आहे
1: जी? साईं अलाह ताला जा शुक्र।

0: ब्रेक वठंदासीं। हाणे वक़्तु थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, त हाणे हलूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। गॾु गॾु रहिजो ऐं ॿुधंदा रहो GFM 94 मेहरापुर।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
2: हथे गुल मेंदी पीरे गुल मेंदी
3: आई अदी अज ते दाडी खुशी पई नजर अची
2: छो न खुश थिया अदी जदे खा मुजे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार बीणी थी वई आहे ए हाणे पैसा भी बीणा था अचन। ही दिस सोनियो चूड़ियो
3: मां भी वही चवा उन ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए।
4: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
5: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे बारन के पोलियो खां बचाव जा कतरा जरूर पियारियो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफ़ती ताकत के वधाइन था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबन के उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माज़ूरी।
6: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
7: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यो नवी दुनिया पलोर रवानवी। خود پولیو رنز دا قدمونو درولی هم شی نو پدی وجا دا پولیو دا هر مهم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهی روی زکه چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا حقی دا خوبون والوت وزاری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری
1: سونا सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
8: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
9: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन।

कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफ़ो ॿीहर अवां सभिनी ॿुधंदड़नि खे ख़ुशि आमदीद चऊं था। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति तव्हांखे ॼाण ॾींदा आहिनि, जिन में गुर्दे पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कंदा आहिनि। ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-8051 0301-2196-8051।

डॉक्टर साहब, हर वाह खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह 10 का शाम 5 वगे तई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन पोटा पेट्रोल पंप कोंटरी रोड मेरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आन। अंगारे जी डी क्लिनिक बंद होंदी आए में हफ्ते जा 3 डी जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुल फ्री होंदी आए। बाकी दवा मरीज के स्टोर तां वठनी होंदी आए। असाजे प्रोग्राम में बेज़रिया लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था। असाजे लाइव कॉल जो नंबर है 0301 96 8051।

0: डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि। डॉक्टर साहब हिकु कॉल जी तरफ़ हलंदासीं, असांजे प्रोग्राम जी पहिरीं कॉल जी तरफ़। अस्सलाम वालेकुम, केरु ईंदा किथां खां? जी अजा, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहब खां?
1: मथे में गोरियूं थियूं आहिनि, हिकिड़ी वॾी थी विया, पकिड़े बि करे विया, नरम थी विया।
0: जी जी,
1: पोइ उन जो हल
0: डॉक्टर साहब खे असां अवां रूबरू ॾेखारियो त वधीक बहितर आहे, वरना अवां खे ॿुधाए थो डॉक्टर साहब। रेडियो ॿुधो। जी सर, जी सर,
2: ईंदो त हुनखे ॾिसी करे पोइ सही नमूने सां दवा ॾेई सघिबी। वॾी महिरबानी।
0: बिल्कुलु सर, ज़ाहिर आहे सर, साम्हूं ईंदो त हुन तरीक़े सां तव्हां मुआइनो कंदा त ओड़े हिसाब सां तव्हांजे दवा ॾींदा। लाइव कॉल जो नंबर हिकु दफ़ो अवां ॿीहर अवांखे रिपीट कराईंदासीं, 0201 91 8051।

0: डॉक्टर साहब लगे तो कॉल ड्राप थी चुकी है।
1: दोस्तों खे यूज़ कंदासीं त थोरो ॿाहिरि निकिरी करे न जिते एरिया हुजे खुलियल हुजे नेटवर्क सही हुजे त उतां बि ॻाल्हायूं।
0: बिल्कुलु सर, हिकु ॿी कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: अदा रेडियो सेट ऑफ कजो।
0: रेडियो सेट अदा पहिरियां बंदि कजो।
2: जी जी
0: जी, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहब खां? सर, असां लिसनर्स खे पहिरियां बि चवंदा आहियूं त जॾहिं बि कॉल कयो तव्हां त सभ खां पहिरियां वीडियो बंदि करे
1: टाइम ख़राबु करिणो हूंदो आहे। पहिरियां बि चयल आहे त कॉल जॾहिं तव्हां कयो त रेडियो सेट ऑफ करे पोइ कंदा कयो।
0: बिल्कुलु सर।
1: जी सर।

ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851 0301-2196-851।

0: प्रोग्राम में हिकु लाइव कॉल जी तरफ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। अदा केरे किथां खां?
1: सर फकीराबाद खां था ॻाल्हायूं।
0: जी जा, छा पुछण था हिन डॉक्टर साहब खां?
1: सर पहिरियों माथे में तकलीफ़ हुई, माथे में दवा वरिती हुई।
0: जी जी।
1: हाणे कमज़ोरी रहे थी जिस्म में सर।
0: अच्छा, किथां वरिती दवा?
1: सही वरिती आहे कंबट मां सर।
0: अच्छा,
1: हाणे तबियत माना सही थी आहे। हाणे माना जंगनि में साई बि रहे थी, माना थकजी थो पवां, माना हा में सोर बि पए थो।
0: जी जी, ठीकु आहे। डॉक्टर साहब अव्हांखे ॿुधाए थो, रेडियो ॿुधो। जी सर,
2: बिल्कुलु। हिकिड़ी मादे जी कमज़ोरी थी वेंदी आहे, उन खां पोइ थी वेंदी आहे। सौंफ़ हर खाधे खां पोइ मां हर मरीज़ खे ॿुधाईंदो आहियां, हर खाधे खां पोइ सौंफ़ जी चपटी जेको आहे सो वात में विझी छॾे माण्हू, उहा काफ़ी जेको आहे सो फ़ाइदे वारी आहे। उहा उनजी एसाबी कमज़ोरी बि दूरि कंदी आहे त मादो बि सही कंदी आहे। या उनखां अलावा अदपा बादाम, अदपा सौंफ़, अदपा मिसरी पाण में सफ़ूफ़ करे चमची सुबुह शाम खाइण सां काफ़ी हद तक फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे। लेकिन अञा बि कमज़ोरी घणी आहे त रूबरू क्लिनिक ते ॾेखारे वञनि, उन होम्योपैथिक में जेकी हर लिहाज़ सां बहितरु हूंदी आहे। वधीक दवा ॾींदासीं, इनशा तरह ठीकु थी वेंदो।
0: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहबु, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे, पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन ते कामयाबु

0: इलाज कंदा आहिनि। संदन जोड़न गोडन जो सूर, कुंज रग जो सूर, नक कन गलो नज़लो निछो मथे जो सूर, अर नज़र जी कमजोरी, कन जो सूर, घट बुधण में अचन, शुगर ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फालिज, खंग, टीबी, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधण, जिगर हबी, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधण, ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि में जो इलाज कंदा। ऐं अव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 101-9196-851। डॉक्टर साहब हर अरबा, खमीस, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंपुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा। प्रोग्राम में हिकु ॿी ॻाल्हि जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम सलाम सर, छा हाल आहे सर?
0: अलहमदुलिल्लाह, तव्हां ॿुधायो कहिड़े किथां खां?
1: सर मां कोटड़ी कंबीर खां ई पियो ॻाल्हायां।
0: जी अदा, छा पुछण चाहींदा डॉक्टर साहब खां?
1: सर घरनि में तकलीफ़ रहे थो, डॉक्टर साहब अॻिते मिलूं।
0: कोटड़ी कंबीर बिल्कुलु क़रीब आहे, ॾेखारींदा त वधीक बहितर आहे। अव्हांखे डॉक्टर साहिब ॿुधाए थो, रेडियो ॿुधो।
2: ॻाल्हाइण खां बिल्कुलु होशियार पियल इहो ई मशवरो ॾींदासीं। तकलीफ़ पुराणी आहे त बहितर ईअं ई आहे त रूबरू ॾेखारे वञे।
0: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि मंज़ूर हुसैन महमूद साहब। प्रोग्राम ज़रिए शाम असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0396-8851। प्रोग्राम ॾींदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी
0: सर।
2: जी साईं, बिल्कुलु काफ़ी बहितर सुवाल आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त हिकु त खाधे जा जेको रूटीन्स हूंदा आहिनि असांजा, उन हवाले सां जेकॾहिं माण्हू टाइम ते पंहिंजो खाधो खाईंदो आहे त उन सां काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वियो। ॿियो खाइण जो तरीक़ेकार सुनत नबवी जे मुताबिक़ आहे त अञा वधीक बहितरु आहे। असां ईअं हूंदो आहे, ईअं कंदा आहियूं त जेको बेकुमलो हिकिड़ो खाधो खाईंदा आहियूं या चांहि ज़्यादा पीअंदा आहियूं, पोइ जेको आहे सो मादे ते भोजन पिणु रहंदो आहे, या सिगरेट बि पीअंदा आहियूं। लेकिन ईअं बि थींदो आहे जो मानी खाई वरी हिकदमि पाणी पी छॾींदा आहियूं, त उहो बि जेको आहे सो मादे जे लाइ हानिकार हूंदो आहे। हिकु त मानी खाइण खां अॻे अधु कलाकु अॻे पाणी पीअणु घुरिजे, ऐं मानी खाइण खां कलाकु ॾेढ खां बाद में पाणी पीअणु घुरिजे। इहो हिकिड़ो रूटीन आहे। ऐं मानी जेको आहे सो खाई यकदमि सुम्हणु न खपे, घटि में घटि 2 कलाकु उनजो वक़फ़ो हुजे, त इहो हिकिड़ो तरीक़ेकार हूंदो आहे। हुन खां पोइ सणबी शइ, चिकनाहट वारी शइ, तरियल शइ, खटी शइ या भोजन पिणु कंदी आहे, उन खां थोरो परहेज कंदा कयो। ऐं उनखां पोइ जीरो ऐं सौंफ़ चमची चमची पाणीअ में काढ़े उनजो काढ़ो जेको आहे सो ठाहे करे उन में तव्हां अदरक बि मिलाए सघो था। उहो तव्हां सुबुह जो नेराने जेको आहे सो पीअंदो, इनशा ताला उन सां काफ़ी इफ़ाक़ो अची वेंदो आहे। जेके बि माथे ते ग़लीज़ जेके मादा अची वेंदा आहिनि उहे बि अख़राज थी वेंदा, अव्हांजो कॉन्स्टिपेशन जेकॾहिं कब्ज़ आहे त उहा बि ख़तमु थी वेंदी, अव्हांजो हाज़मो बि दुरुस्त थी वेंदो आहे। ऐं जेकॾहिं ईअं न त जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त सौंफ़ तव्हां हर खाधे खां पोइ ईअं बि चॿाड़े सघो था, उहो बि अव्हांखे फ़ाइदो ॾेई सघे थो। चांहि जो इस्तेमालु घटि कयो, घटियूं शयूं, ॿाहिरियूं शयूं इस्तेमालु घटि कयो, इनशा ताला काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदो। अञा बि फ़र्क़ु न पए त होम्योपैथिक दवा इस्तेमालु करे सघो था असां वटां, अलाह कंदो उन में बि तव्हांखे शिफ़ा मिली वेंदी। वॾी महिरबानी
0: जी सर। प्रोग्राम जी लास्ट कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। जी अदा, कहिड़े किथां खां? छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां? जी अदा, इलाज बिल्कुलु मौजूदु आहे, रूबरू ॾेखारियो डॉक्टर साहिब खे। डॉक्टर साहिब ॿुधाए थो वधीक। जी सर।
2: हा जी सर, बिल्कुलु ॿुधाईंदासीं। उनजो इलाजु ट्रीटमेंट

0: मौजूद है अल्लाह ताला जी मेहरबानी सा सभी पेशेंट असि होम्योपैथिक इलाज से इन मादे के बीमार में या पिते में जी पथरी होंद या जिगर जी सोजिश चर्बी थी वेंदी है या गुर्दे में जो किचरो अची वो है उनसे अल्हम्दुलिल्लाह उनके शिफा मिली चुकी है। अदे के भी मशहूर दिनस तो मेहरापुर हालानी वेझी है मेहरापुर एक दफो अची सामू वजरा पोटा पेट्रोल पंप वहाँ जी एड्रेस बुधाई वहाँ अची रूबरू ॾेखारींदा इनशा ताला दवा के हिसाब से जैसे दवा मिली मरीज खाई तो इनशाला तला काफ़ी अफाको अची वही
1: डॉक्टर साहब वक्त जो एहसास वक्त पूरा थी चुको है असो प्रोग्राम जो आखिर में कड़ो पैगाम
0: जी बिल्कुल वक्त चवे बादशाह वक्त कें इंतजार न कह वक्त जो टाइम तुम अंदाजो पा लगे सोता मैसेज यो है तो हर वक्त खुश रहा कर छोजो खुशी रूह के तस्कीन पहुँचाई है रूह के खुशी तद तस्कीन पहुँचाई है जैसे रूह पाक हों रूह पाक तद है जैसे वहाँ हर वक्त वजू में होंद नमाज़ पढ़ना हो बड़ी मेहरबानी
1: असने प्रोग्राम सेहत की गाल वक्त भी अजी पुजाणी तो पौतो दुआए तो अल्लाह पाक तुम सभी के सदा तंदुरुस्त सदा खुश रखे इंदर प्रोग्राम तजाजत दींदा पैं मेज़बान एहसान अली सियाल के अल्लाह हाफिज़।

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: दुकान मार्केट से शॉपिंग मॉल से रात 9 बजे बंद थींदा शादी हॉल से ब्यू कमर्शियल सर्कल में रात 10 बजे ताई हुंदियो होटल रे कैफेस रात 11 बजे बंद कया वेंदा हुकूमत पेट्रोलियम शयन जे वधंदड़ अघन के नजर में रखंदे 3 महीने लाइ किफायत शहरी मुहिम जो नोटिफिकेशन जारी करे छड़ियो शादी तकरीबन में रुगो एक डिश पेश करण जो फैसलो फार्मेसीज लेबोरेटरीज क्लिनिक्स अस्पताल तंदूर ए पेट्रोल पंप्स पाबंदी का आजा टेक अवे ऐं होम डिलीवरी सर्विसिस खे बि बंदिश खां छूट 3 महीननि लाइ परडे॒ही सरकारी दौरनि ऐं सफ़र ते मुकमल पाबंदी लागू ज़रूरत पवण ते वज़ीर सलाहकार ऐं सरकारी आफ़िसर इकोनॉमी क्लास में सफ़र कंदा सरकारी आजियाणनि ते बि पाबंदी हुकूमत जे ख़र्च ते को प्रोग्राम न थींदो 50% सरकारी गाॾियूं ग्राउंड थींदियूं सरकारी गाॾियुनि लाइ तेल जी फ़राहमी में बि घटिताई

फ्यूल रिलीफ पैकेज ते हुकूमत ऐं पेट्रोलियम डीलर्स विच में ॻाल्हियूं कामयाब। इस्लामाबाद में कटाणी दौरान ॿिन्ही धुरियुनि विच में मामला तय थी विया। डीलर्स खे स्टेट बैंक ज़रिए 48 कलाकनि अंदरि अकाउंट्स में रक़म मुंतक़िल करण ते इतफ़ाक़। पेट्रोलियम वारे वज़ीर पारां आईंदा स्टेक होल्डर सां मुशावरत जो अमल वधीक बहितर बणाइण जी ख़ातिरी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो चवण आहे त हुकूमत अदायगियुनि जे तरीक़ेकार जो नोटिफिकेशन जल्द जारी कंदी। फ्यूल रिलीफ पैकेज ते अमल शुरू कयो वियो आहे। सिंध में 25 एकड़नि जी एराज़ी ताईं कणक पोखींदड़ आबादगार सब्सिडी पैकेज लाइ अहल करार। खुराक खाते खे कणक फराहम कंदड़ हारियुनि खे वाधू सब्सिडी मिलनि। हथ वारे वज़ीर जी अॻुवाणी में आबादगारनि लाइ कमेटी बि क़ाइमु। सिंध काबीना आबादगारनि लाइ कणक ते फराहम कंदड़ हारियुनि लाइ 1000 मां वधाए 2000 रुपया फी मण कई वई। वॾे वज़ीर हुसैन जे इजलास में 25 एकड़नि ताईं ज़मीन रखंदड़ हारियुनि जी नई रजिस्ट्रेशन खोलण जो फ़ैसिलो। सूबे में मिल्कियतनि खे डिजिटलाइज़ करण ऐं स्पोर्ट्स पॉलिसी जी मंज़ूरी। काबीना पारां एडवांस कलेक्शन टैक्स ॿीहर उघाइण जो बि फ़ैसिलो। सिंध हुकूमत कणक ख़रीदारी में नाकामी जो इतराफ़ करे।

पीपी सिंध के सदर निसार कोड़े चाहे तो सिंध असेंबली केतरा ही भेरा ठहराव पास कर चुकी है तो सिंध के नव सूबो न खपे सूबा ठाणा है तो पंजाब ए केपी में ठाओ एक वफाकी वजीर सूबे के मामले से हथियार खण जो चई रो है यो अमल

हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-700
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नई सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तीन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर पर किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतरगार फेशियल रेजुवेनेशन तरोताजा नजर आने के साथ महफूज और मौसर इनपुट की निगरानी में की कुशन रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569

0: सिटी रोड मेहरापुर 0300338।
1: छा कजे
2: मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी भेट हलंदी।
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेहरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन्स और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूम।

मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब।

0: चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बे डरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पियारियो, छो त ये कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज़ भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

थमर गो उथल फुथल मौला जाने मन में ही केड़ी बाहे मतल ओ मुले आहे महर थी ही रब बाहे ततल ओ दिल पर दर्द बतल।

0: जी जान तारो मसालो हर वे जे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करयो
1: घर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंस दा कदमुनो द्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी द्व सास की वरकवल माहिरवई जका चहुम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000 3105109 0300 3105109 सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल

मिल्क राइस ब्यूटी शो ऐं जी एफ एम 94 मैरापुर जे ॿुधंदड़नि सभिनी मानायतनि दोस्तनि महबूबनि दिलरुबा भाइरनि पिणी प्यारनि खे वेलकम भली कार ख़ुशामदी जी आहियां वशाद खे ऐं बख़ैर राग ले।

उम्मीद त सभई दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक ख़ैरु आफ़ियत सां पंहिंजे बचड़नि सां गॾु जेको आहे त ख़ुशि पंहिंजी लाइफ में हूंदा। ख़ुदा वंज चहिरनि ते सदा मुर्कूं वेखेरींदो रहे ऐं पंहिंजे बचड़नि सां ख़ुशो शादो आबाद हुजे। ऐं ॿुधंदा रहो मिल्क राइस ब्यूटी शो GFM 94 मैरापुर। त दोस्तो मिल्क राइस ब्यूटी शो सां गॾु आऊं हिक भेरो ॿीहर वरी अव्हां भाइरनि जे साम्हूं आयो आहियां ऐं जिन दोस्तनि कल्ह कॉलूं कयूं उन्हनि खां अॼु फीडबैक वठंदासीं त किन दोस्तनि जेको आहे त प्रोडक्ट असांजी इस्तेमालु कई ऐं किन दोस्तनि जेको आहे त प्रोडक्ट वठणु विया। हाणे जेकॾहिं जिन वरिती आहे त उन्हनि जो बिल्कुलु फीडबैक ज़रूरी आहे, लाज़मी आहे, ऐं सॉन्ग्स जी गीतनि जी गाननि जी फरमाइश पिणु हलंदी। पर गॾोगॾु जेको आहे त मिल्क राइस जेका प्रोडक्ट आहे उन जे बारे में बि ॼाण वठबी, फीडबैक लाज़मी आहे। छाकाणि त असांजी जेका प्रोडक्ट आहे उहा दावा थी पई करे त टिनि ॾींहनि में अव्हांजे निखार में तब्दीली अची वेंदी। क्योंकि ख़ूबसूरती जो नज़र आहे और भरोसा जो दिलि जीत ले। जॾहिं बात भरोसे की हो त मतिलबु शइ में दम आहे, ऐं जॾहिं दम आहे त पोइ असांखे इस्तेमालु असांखे हूअं बि ॿी प्रोडक्ट घर में किरणु कयूं था पिया रोज़मर्रा जी में, त पोइ जेकॾहिं बहितर बि आहे प्रोडक्ट में दम बि आहे त पोइ असां जी रिकमेंड थियल शइ यकीननि अव्हां इस्तेमालु कंदो ऐं अव्हांखे फ़ाइदो थींदो। अच्छा शॉपकीपर्स छा कंदा आहिनि जॾहिं का विदाउट अव्हां नाले वठण जी का शइ वठंदा त का बि शइ अव्हांखे थापे छॾींदा आहिनि, पर अव्हां जॾहिं बि जनरल स्टोर्स ते वञो त जनरल स्टोर असां वारा त बिल्कुलु प्रीम प्यारा दिलरुबा दिलबर दोस्त आहिनि। उहे अव्हांजे वेट में हूंदा आहिनि त उन्हनि खे ख़बर आहे त ही GFM 94 मिल्क राइस ब्यूटी शो जा लिसनर्स आहिनि। इन्हनि खे प्रोडक्ट फ़क़ति ओनली ऐं ओनली मिल्क राइस जी प्रोडक्ट खपे, जेका मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम का बि थी सघे थी।

ऐं अव्हां खे असां जे रिकमेंडेड जनरल स्टोर्स ते वञिणो आहे। जनरल स्टोर अव्हां जे शहर जा मशहूर ॼातल सुञातल तमामु वॾा जनरल स्टोर्स आहिनि, जिन मंझां ख़ुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मैरापुर, हफ़ीज़ जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर। ऐं हिन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां किथे बि कंहिं पंहिंजे शहर जे कंहिं जनरल स्टोर ते अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट जी कराइणु चाहियो था, त अव्हांखे असांजे हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करणी पवंदी। ऐं हेल्पलाइन नंबर ते कॉल ते यादि आयो त ज़फ़र इक़बाल साहिब जिन मूंसां हेलो हाई कई, उन्हनि चयो त बिल्कुलु कॉल्स काफ़ी आहियूं पर दोस्त अञा घटि पहुता आहिनि, त उमेदु कयां थो त अॼु दोस्त वधीक पहुता हूंदा। मलिक ज़फ़र इक़बाल साहिब सां राबितो करे प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी लाइ असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-510-9। ऐं हिन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां प्रोग्राम में शामिलु थियणु चाहियो था, असां सां लाइव कॉल वसीले ॻाल्हि ॿोल करणु चाहियो था, पंहिंजी फ़रमाइश का बि करणु चाहियो था, त उन जे लाइ अव्हांखे असांजो लाइव कॉलिंग नंबर मिलाइणो पवंदो। असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 0300-93-19-607।

0: जी दोस्तों, त पोइ असां स्टार्ट कंदासीं, इब्तिदा कंदासीं ख़ूबसूरत धमाल प्लस मनकबत साइण अब्द परवीन जी आवाज़ में। दामन लॻी हां मौला, मैं तो तेरी हां, मस्तो मस्त कलंदर, मैं तो तेरी हां। अचो त गॾिजी ख़ूबसूरत धमाल इंजॉय कयूं।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील महासे।

0: वेलकम बैक मिल्क प्राइस ब्यूटी शो सा गड मा आ बि चौहान आ बुधी रहा जी एफएम 94 मेहराबपुर जी दोस्तों हियर असा शामिल कंदा से अवा जो कालू अवा असा के कॉल करे सको था पजे फीडबैक खा आगाह करे सको था प्रोडक्ट जे हवाले सा फरमाइश गीत जे हवाले सा गाल बोल कचेरी जे हवाले सा इवन तोड़े जो को शेर शायरी पजे दिल जी गाल जे हवाले सा तो पोए असा जो लाइव कॉलिंग नंबर आ है 03939319667 असा सा कॉलर लाइन ते मौजूद आइन कॉल अटेंड कंदा से हेलो अस्सलाम वालेकुम केर साई किथा का हेलो हेलो केर दा किथा का
1: अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम सलाम केर प्यारा किथा का
1: साई रियाज हुसैन शेख मेरा परमा साई
0: रियाज हुसैन साई वेलकम बलिकार रेडियो साइड क्यों आवाज आवाज डबल पहुंचे रेडियो साइड क्यों अदा रेडियो बंद क्यों भा
1: मेरापुर को साईं
0: रेडियो बंद क्यों
1: जी साईं जी जी
0: हां डबल आवाज पे होचे गाल कौन थी सकदी
1: जी साईं
0: अदा मुडो बुधो मोबाइल ता बुधो हु बंद क्यों रेडियो बंद क्यों हां जी अदा मादर खाऊं जदे अवां मुसा गाल करण ला होना पहिजी भी लाइव आवाज बुधण चाहो था तो पोवरी असा सा गाल कोन थी सकदी मुखे डबल आवाज पे अच्छे असा भी कॉल अटेंड कंदा से हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: साईं
0: वालेकुम अस्सलाम केर प्यारा किथा का
2: साईं रिजवान खास कलीकोट दा वीर आवाज था
0: साईं रिजवान खास कली साहब वेलकम बलिकार खुशामदीद केड़ा हालन प्यारा कदें पो हाने कमिटमेंट नेक्स्ट कॉल जदे तहां सा गल बोल थे तो पो प्रोडक्ट लाजमी इस्तेमाल करे असा के फीडबैक पेंट दियो
2: ठीक आ
0: पो कदें वंजबो सुभाने कंफर्म क्यों
2: सही सुभाने बिना बे दिन इंशाल्लाह
0: जो तहां का परे आ जा असा प्रोडक्ट
2: न सही सफा वे जो आ ये 5-6 किलोमीटर परे आ मेरा पूरा
0: पोवरी यो परे परिए जो किड़ो जो आ मतलब मंतिका
2: कैंजो
0: जवार केड़ो फकीर रजिब फकीर को बियो या रुगो जवार
2: जवार फकीर नालो ने जो फनकार
0: अच्छा गीत बुधायो
2: जी सही यो मा डेडिकेट कलम पने भारन के
0: जवार फकीर जो गीत केड़ो
2: टाइम को पहला छ जो सही
0: ठीक आ जी अवा जे भारन जा नाम खणो
2: सही खालिद हुसैन
0: जी
2: मामा अली रुस्तम अली
0: जी
2: आई वकास अली सही
0: सही इनन के जी
2: ਹਾਂ ਜੇ ਕੇ ਸਹੀ ਐਫਐਮ ਬੁਧੰਦਾਂ ਬੁਧੰਦਾ ਦਾ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
0: ਠੀਕ ਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਿਆਰਾ
2: ਠੀਕ ਆ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जी बिल्कुल दोस्तों अवां जो रिस्पॉन्स भरपूर मिल रहा है असा कॉल्स अवां जो शामिल कंदासे ऐं जेको आ अवां खां गाल बोल कंदासे प्रोडक्ट जे हवाले सां भी कचहरी भी कंदासे त पो कॉलर लाइन ते मौजूद आहिन अस्सलाम वालेकुम केर साई किथा का
3: साई वालेकुम अस्सलाम से हुसैन बख्शल नवाब संगत
0: का परे खां पधरो मुजो भा लखन में पधरो वेलकम भलीगा केड़ालन खुश आयो
3: हां बिल्कुल सर आऊं खुश है हालत में आए सान ने का दोस्तन जी दुआएं आई उम्मीद कया तो आ भी वद में वद खुश हो
0: आमीन आमीन बिल्कुल अल्लाह एहसान दुआओं ता भरन जो
3: बस साई शाद हो जो आबाद हो जो आए वडी शिद्दत सा हां ता दोस्तन जो इंतजार कंदा हूं तो साई जन अचन प्रोग्राम कन आ सा कन नहीं बुझाऊं आई शामिल भी थियूं
0: हुसैन बख साई कचहरी ते मजेदार थींदी आए पंजी दिल जे गाल में भी ए सब दोस्त लुत्फ अंदोज थींदान मूं कल अवां के कल चयो त अवां असां के पंहिंजी संगत में शामिल कयो, हीउ सॼो तव्हांजो शहर तव्हांजो भरपासो ओड़ो पोड़ो पाड़ो ॿुधे थो। मोहबती माण्हू आहियो अवां न, जेके बि मोहबती माण्हू आहिनि असां सभिनी सां जुड़णु चाहियूं था। मूं अवां खे चयो पंहिंजे ग्रुप में शामिल कयो, असांखे एड कयो त डेली अवां सां कचहरी मुखातिब थींदा रहूं।
3: हा बिल्कुलु सर, ईअं इंशाल्लाह कचहरियूं हलंदियूं ऐं क़ाइम रहंदियूं ऐं मुहबत भरियूं कचहरियूं हूंदियूं साईं। ऐं अवां खां हिक सां कचहरी कंदासीं। ऐं मां तव्हां अॼु पूरी संगत सां मां वाइदो कयो आहे त जिथे बि काल ते हुजो, कहिड़े बि प्रोग्राम हुजो, कहिड़े बि इंडस्ट्री हुजो, कहिड़े बि एफएम ते हुजो, साईं जन जो नालो ज़रूरु खणिजो, हुनखे सलाम ज़रूरु ॾिजो। पिया
0: वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी, लख लाइक। इहो मां अवांखे ओपनली चयो त जीअं पाण वधीक कनेक्ट थियूं, हिक ॿिए सां जुड़िया पिया हुजूं, ॿिया सभई लिसनर्स जेके बि मदा आहिनि एफएम जा या असांजा, असां उन्हनि जा ख़ादिम आहियूं, त मूं अवांखे जेको व्हाट्सएप नंबर उते जेको रिसीव कंदा आहियूं मैसेजिस न, हिन में पंहिंजो प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि में, त उहो असां शामिलु कयो पंहिंजे ग्रुप में जेको नवाबी संगत अथव, त असां जुड़ी वेंदासीं तव्हां सां।
3: बिल्कुलु सर, इहो अॼु जेको मुंहिंजो हिन नवाबी संगत जो एडमिन आहे न साईं
0: जी,
3: मां हुन सां बि ॻाल्हि करे छॾी आहे त साईं जन प्रोग्राम कंदा अथव सवाइ अठे खां नाए ताईं 94 ते, हुन खां अलावा सवाइ नाए खां 11 ताईं 88 सखर सां प्रोग्राम कंदो आहे। दिलि जी ॻाल्हि
0: जी जी जी जी,
3: इन में भरपूर हिसो वठो। ऐं मां नंबर बि ॾेई छॾिया आहिनि, इंशाल्लाह ताला तयारी में हूंदा। ऐं हर ॻाल्हि हर मोड़ ते साईं बिल्कुलु
0: ग्रुप मेड कंदो त पोइ असां गॾिजी वेंदासीं सभिनी दोस्तनि सां। हलो आहे पई हलंदी, ॿिया दोस्त बि जुड़णु चाहिनि त मां जेको नंबर अनाउंस कंदो आहियां हुन में व्हाट्सअप जो, उहो तव्हां असांखे, पर फ़क़त व्हाट्सअप ई रहे हुन में, कॉलिंग वरी पोइ कंटिन्यू हूंदी त असां अटेंड कोन करे सघंदासीं।
3: बिल्कुलु,
0: ॿियो दोस्तनि खे बि रिकमेंड कयो पिया जेका त इहा प्रोडक्ट।
3: बिल्कुलु सर, मुंहिंजी जेका नवाबी संगत आहे तव्हांजी तरफ़ भरपूर हिसे वार आहे। ऐं जेके मुंहिंजा परे जी अक्सर नवाबी संगत आहे मुंहिंजा दोस्तनि हो माना जेके घणा जेको आहे सिटी खैरपुर मीरत जा आहिनि ऐं हुनजे आस पास जा आहिनि। हा बिल्कुलु, बाक़ी असांजा जेके हिते असां नवाबी संगत जा कुझु तव्हांजी मीरापुर जे एरिया जा वेझा आहियूं।
0: अवां कहिड़े शहर जा आहियो? अवां कहिड़े शहर जा आहियो?
3: मीरापुर खां 12-13 किलोमीटर जे मुफ़ासिले ते आहियूं,
0: जालको
3: सोबे धेरे में। असांजो पंहिंजो ॻोठु आहे चेती श्याल, जेको खानवान जे वेझो लॻे थो, खानवान ते
0: सही। ॿियो छा चवणु चाहींदो, दोस्तनि जा नाव शामिल करणु चाहींदो?
3: हा बिल्कुलु सर, नवाबी संगत जा दोस्त आहिनि ऐं हींअर अवां बि मुंहिंजा दोस्त आहियो नवाबी संगत जा। पहिरियों त तव्हांखे सलाम,
0: ऐं
3: उन खां अलावा जेके असांजा पंजगिरदा जा जेके दोस्त अचनि था ऐं जेके हींअर प्रोग्राम शामिल थी चुका आहिनि, मां बि उन्हनि खे बि नवाबी संगत में शामिल कयां थो, उन्हनि खे बि सलाम। ऐं असलम चन्ना खे सलाम साईं, मुनीर अमन सयाल खे सलाम, बाक़ी जेके मुंहिंजी दोस्त नवाबी संगत आहे सभिनी खे सलाम,
0: शामिल कंदासीं प्रोग्राम में ज़वार फ़क़ीर जी ख़ूबसूरत आवाज़ में ख़ूबसूरत गीत, उन खां पोइ वरी वरंदासीं। ॿुधंदा रहो GFM 94 मेहराबपुर।
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे

0: हिक गाल च वई
1: मुझे कलाम गायल है सबनी दोस्तों की फरमाइश।

0: जी दोस्तों वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गल प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो से गुरा हूँ अबित चौहान आया बुधी रहा हो जी एफ एम 94 मैरापुर जी दोस्तों असा सा गुड़ो कॉलर मौजूद है कॉल अटेंड कंदासे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम केर साईं किथा का
1: साईं रियाज हुसैन शेख तालका मैरापुर जिला नशोर फिरोज गोट खुदा बख्शा दे लांगड़ी मैरापुर
0: साईं मुझे वेलकम भलीकार खुशामदीद
1: साईं खुश आयो के

0: साईं चवण ॿियो कुझु इहो चवंदासीं, असांखे नाशाद साईं जो जेको आहे त हिकिड़ो नुंहुं ॿुधाए छॾियो, ए जन्नत मौल अली दीए
1: मनकबता।
0: हा, जन्नत अली दीए।
1: हा, मनकबत आहे, मनकबत शामिल करे छॾंदासीं। नोहो वरी थोरो सैड फील थी वेंदो न, त उहो वरी हा सैड थी वेंदो। बाक़ी हा, मनकबत हलाए छॾंदासीं म्यूज़िकल। जी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल साईं। ॿियो दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहींदो?
0: साईं ज़ैन हैदर शेख, प्याज़ हुसैन शेख, हसीन शेख ऐं साईं आज़ादार शेख। साईं
1: साईं सभिनी खे मुंहिंजी तरफ़ां बि सलाम, वॾी महिरबानी।
0: स्टाफ के साईं सलाम अलैकुम।
1: वाह सलाम सखी पीर मौला अली मदद, लव यू, लख लाइक साईं, कुर्ब मोहब्बतूं।

0: दोस्तन के प्रोग्राम जे बारे में भी बुधायो है, दोस्तन के प्रोडक्ट जे बारे में भी बुधायो।
1: जरूर सही बुधा दे।
0: छा चवण चाहिदो दोस्तन जा नाव शामिल करण चाहिदो?
1: यार दोस्तन अगर बुधा ते बाबा मुजो शीरा दोस्तन शेरो एक आफताब मंद शेरो इब्राहिम मंद शेरो
0: जी साईं। हाणे तव्हांखे मैरापुर किथे परे थो पवे, केतिरो या वेझो आहे?
1: जी साईं
0: मैरापुर केतिरो परे थो पवे असांखे?
1: मैरापुर सुठो ई परे थो पए असांखे, तकरीबन 25 किलोमीटर थी वेंदा।
0: ठीकु आहे, हुन हुनखे छॾियो पोइ तव्हां हीअं कयो, हीउ नंबर नोट कयो, असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे ऐं तव्हांजे पंहिंजे शहर में बि हुते अवेलेबल थी वेंदी कंहिं बि जनरल स्टोर ते। तव्हां नंबर नोट कयो, असां हेल्पलाइन नंबर आहे 0300 310 510 9। ॿीहर थो पियो चवां 0300 310 510 9। इन नंबर ते कॉल कंदो, इहो हेल्पलाइन नंबर आहे असांजो प्रोडक्ट जे हवाले सां। जिते बि तव्हां घुराइण चाहियो प्रोडक्ट, तव्हां कंहिं शॉप ते अवेलेबल कराइण चाहियो जनरल स्टोर ते, उते ॻाल्हि ॿोल कंदो मलिक ज़फ़र इक़बाल साहिब सां या वरी एम सिद्दीक साहिब सां, प्रोडक्ट तव्हांजे पंहिंजे शहर में उते अवेलेबल थी वेंदी। जी कयां, फरमाइश ॿुधायो। कंहिंजो? महबूब मीरजत जो प्ले लिस्ट में शामिल कयूं था। वॾी महिरबानी प्यारा, कुर्ब लख लाइक, थैंक यू प्यारा, ओके।

0: जी दोस्तों कॉल अटेंड कंदा से। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां गा? केर अदा किथां गा? नवाबी संगत का खैरपुर मीरजगा। भली कार नवाबी संगत के, अवां के भली कार।
1: साईं तवां जे प्रोग्राम ते पहिरीं काला तां जी वॾी तारीफ़ ॿुधी आहे। तवां सां नवाबी संगत जी वॾी तारीफ़
0: लख लाइ की मोहबत हुआ नवाबी संगत जूं खैरपुर वारनि जूं। जी पहिरां
1: ॿियो साईं खैर लॻा पिया आहिनि? ख़ुशि लॻा पिया आहियो?
0: अलाह जा अहसान, अलाह जा अहसान। दुआऊं
1: अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि कंदो, सदाईं शाद हूंदो, आबाद हूंदो।
0: पोइ कहिड़ो कहिड़ो प्रोग्राम ॿुधो पिया जी एफ एम जो? अमां नवाबी संगत हाल अवाल वठी वठजो। हूअं त जी एफ एम जी जी क्रीम सिर्फ़ ॿुधणी न आहे, वठणी बि आहे। नवाबी संगत सभ खां अॻु में वठंदी।
1: बिल्कुलु बिल्कुलु साईं, कुझु नवाबी संगत वरिती आहे,
0: बिल्कुलु
1: कुझु वठंदासीं।
0: बिल्कुलु क्रीम सां गॾु गॾु साबुण आहे। साबुण त हूअं बि सफ़ा रूटीन आहे न। क्रीम जेकॾहिं मर्द अप्लाई घटि कनि था पर पोइ बि कनि था अॼुकल्ह, ठीकु आहे। ऐं लेडीज़ त क्रीम लाज़मी इस्तेमालु थी करे घर में इहे इस्तेमालु वारियूं शयूं। साबुण त असां सुबुह शाम मुंहुं धोऊं तड़कियूं, साबुण आहे ई आहे। त पोइ प्रोडक्ट तव्हांजे कम जूं आहिनि पहिरां? न हलंदो, उहा ई ॻाल्हि आहे न। साबुण त लाज़मी घर में हुजे ई हुजे, त पोइ असां जहिड़ो तहिड़ो छो वठूं? असां को हिकिड़ी नाले वारी ब्रांड वठूं जंहिंजी दावा आहे न, त टिनि ॾींहंनि में तव्हांजे चहिरे ते रिज़ल्ट ग्लो अचणु शुरू थींदो साबुण प्लस क्रीम सां। दोस्तनि जा नाओ शामिल कयो।
1: दोस्त जेके बि असां नवाबी संगत जो जेको बि सत असांजो प्रोग्राम ॿुधी रहिया, जीअं मुंहिंजो आवाज़ ॿुधण खे इलाही सारा सलाम ऐं इलाही सारा हुसैन बख़्श ख़्याल खे तव्हांखे तव्हांजी
0: वॾी महिरबानी। पहिरां कुर्ब लव यू, लख लाइ अव्हां खे बि वालेकुम सलाम कुर्ब। थैंक यू। दोस्तों वधंदासीं एक खूबसूरत मनकबत ॾांहुं। अचो त गॾिजी मनकबत एंजॉय कयूं, उन खां पोइ वरी वरंदासीं।
2: रन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइस ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल।

0: वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 94 मेहराबपुर। मिल्क राइस की खूबसूरत प्रोडक्ट्स मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एग्नी क्रीम अवेलेबल है हमारे शहर के मेहराबपुर के तमाम बड़े जनरल स्टोर्स पर, जिनमें से शामिल है खुशी जनरल स्टोर मेहराबपुर, फैजान जनरल स्टोर मेहराबपुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मेहराबपुर, हफीज जनरल स्टोर मेहराबपुर, कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर, जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर और अल करम जनरल स्टोर मेहराबपुर। जी हमारे साथ कॉलर मौजूद है लाइन पे, मदर का है कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा जी कॉल शामिल करेंगे प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किता का जी दा सर एकड़ो मिनट आवाज आवाज तमाम घट पे जे। हेलो एकड़ो सेकंड सर जी अदा
1: अदा आवाज अच्छे पे हो
0: जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर
1: अच्छा ना खुश आयो के बस खैरा
0: एवन दो वाला ऐसा नवा बुदायो
1: सही खैर अल्हम्दुलिल्लाह दा दो प्रोग्राम बुदाऊं पे दा फर्स्ट क्लास
0: जी कहतांगा
1: सही गोठ पीर गाड़े खा माशाल्लाह जरवार तो कर रहा बाबा
0: इरशाद जरवार साहब भली कार प्रोग्राम में
1: सही मेहरबानी मेहरबानी सही असा के को कलाम रो बुदायो
0: बिल्कुल कलाम बुदाईंदा सही
1: असा के बुदायो सोडल फकीर जो कलाम आ
0: जी बिल्कुल सोडल जो कलाम भी हलाईंदासीं अवां थोरो घणो पुछंदासीं थोरी हाल अहिवाल कंदासीं त अवां प्रोग्राम ॿुधो पिया प्रोग्राम वणे पियो प्रोग्राम में असां कंहिंजी ॻाल्हि वध में वध करे रहिया आहियूं उनजे हवाले सां थोरी ॻाल्हि ॿोल त कयो
1: साईं ॾाढो तव्हां कलाम हलायो ॾाढो मौज़ू भलो हले पियो मौला अली जे शान जो
0: जी
1: हा ॿुधऊं पिया फर्स्ट क्लास ॾाढो ज़िक्र पिया कयो
0: पहिरां ई प्रोग्राम सॼो स्पॉन्सर्ड आहे जेको आहे त मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट जे हवाले सां उन जे बारे में का ॼाण आहे कॾहिं खां ॿुधो पिया प्रोग्राम असांजो
1: साईं प्रोग्राम असां पुराणा ॿुधंदड़ आहियूं तक़रीबन असां नज़ीर साते वठी यको
0: जी
1: हा पर जेको आहे असां कंहिं महिल ॿाराणी जा माण्हू आहियूं असां इन शइ मां कोन ॼाणूं
0: कहिड़ी मां साबुण मां त ॼाणियो साबुण मुंहुं त धोईंदा हूंदो न साईं तड़ त कंदा हूंदो साबुण पोइ जिते ॿियनि जो इस्तेमालु कयो पिया हुते असांजो करे ॾिसो मिल्क राइस ब्यूटी सोप अवां साबुण इस्तेमालु कयो पोइ तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में अचे त पोइ तव्हां बाद में क्रीम इस्तेमालु घर वारा त कंदा ॿार त कंदा ईअं न भा ईअं जान जान जो था छॾायो
1: कुछ दोस्त आना
0: हां शामिल कियो
1: सही असा जो मौजूदा उस्ताद मानुआ खरड़ा खा फेरी खा उस्ताद मेहराब खास करी साहब बुधे पियो
0: जी
1: अनेगा पो मुजो चाचो मुमताज अली जरवार आई फकीर महबूब अली जरवार
0: सबनी के सलाम मुजे तरफा
1: वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम
0: बड़ी मेहरबानी प्यारा कुर्ब लक लक जी दोस्तों मिल्क राइस ब्यूटी शो सां गॾु आऊं आहियां आबिद चौहान ऐं मां ॿुधी रहियो जी एफ एम 94 असां सां गॾु हिकिड़ो ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सखी पीर मौला अली मदद केरु प्यारा किथां खां भलीकार कयूं था भाउ खे सगियूं कहिड़े तलके में अचे खैरपुर ज़बरदस्त थी वियो वेझाए आयो
1: सोभो देरो
0: खैरपुर तमामु वॾो ज़िलो आहे असांजो
1: जी जी
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल प्रोग्राम बुधो पे प्रोग्राम बने पे में तबली क्यों पे प्रोडक्ट जी पेंजी जी क्यों पे उन जे बारे में का जान का मालूम आ थी या
1: जी जी साईं या बुधो दादा वठंदा रे साईं
0: वडी मेहरबानी वडी मेहरबानी आजमाइन शर्त हुंदो आ असा जी दवा है ने प्रोडक्ट जी त ट्रेनियन में रिजल्ट दिखाईंदी ठीक है ना साईं आ ब्यूटी क्रीम भी है ब्यूटी सोप भी है एक्ने क्रीम भी है एक्ने माने जगह दाना दाग दबा मोईडा नंढड़ी उम्र में माना बलूगत वाली उम्र में नंढड़न के या नंढड़न के थी वेंदान तो पो उन्हन लाए तमाम वा फायदेमंद है बाकी पान लाए तहां लाए असा लाए तो क्रीम है साबुन तो आहे आहे इस्तेमाल जो
1: जी जी साईं जी
0: जी नाम शामिल करना चाहिए दो दोस्तन जा
1: जी जी साईं आता मु तो बुझे तो
0: जी हां
1: अलावरा है बुझे तो उन जी का ख्याल बुझे तो
0: जी
1: वालेकुम
0: सलाम सजी संगत के कुर्ब साईं
1: वालेकुम सलाम
0: मेहरबानी थैंक यू।

0: जी दोस्तों, कॉल शामिल कंदा से प्रोग्राम में असा पहजो प्यार जो पैगाम अवां जो पैगाम सब तई पहुंचायूं था। असा मिल्क राइस जो पैगाम भी पूरे अवां जे तर तई पहुंचायूं था। सो असा सा गद कॉलर आइन लाइन ते हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: साईं
0: साईं मुजा केर किथां का
1: साईं महबूब अली शरफ राम ठरी मीरवा
0: महबूब शरफ राम ठरी मीरवा वेलकम भलीगार प्यारा खुशामदीद केड़ा हालन दुआऊं दुआऊं अल्लाह एहसान अवां पंजा बदायो
1: साईं खैर लगो प्यार साईं अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बदाऊं दा प्यार साईं
0: सजी संगत बिल्कुल खुश लगी पिया ना सजी संगत के मुझे सलाम दिजो सजी संगत के पंजी के मुझे सलाम दिजो
1: वालेकुम सलाम साईं ता जी ड्यूटी क्रीम बिदा दी आ और मचाई आ सा भी
0: जी
1: आवें मतरन दोस्तन वतिया बाकी ठरी मिलो आ में भाई मां भी गुनो न थी मिले
0: ठरी में मिली तबो हेल्पलाइन नंबर नोट क्यों ना प्यारा सा जो
1: आ वो नोट आ साईं रा गलायो तो साईं ना उन जो मिलंदी पर मो मिले भाई मिले रोज
0: मिल्क रोज ना सही मिल्क राइस
1: अगे कलर तो बतायो ना कलर के दजे वो तो सांगे बुधायो ता सा पुछा ता कयो ना सही
0: हां बिल्कुल मां ता प्रोग्राम बुधा रहो सजीन जी डिटेल बुधायो तो ता के ठीक है प्यारा जब भी सा गद नाले सांगे प्रोग्राम बुधा रहो तो नाव शामिल करन चाहिदो प्रोग्राम में
1: सजी धरी छाई बाजार घुमिया सही न मिलिया हाने वाली सुबाने मेरा पर चक्कर लगाणो पोंदो
0: प्यारा लाइट माना सुरमई है ब्लैक टाइप कलर है बियो जो को वाइट है गोल्डन टाइप भी कलर है उन में मिक्स है
1: अच्छा
0: हां ता वधिक जने विंदो तो पो उते जो को शॉपकीपर के नालो खणदो ना मिल्क राइस जो को साईं मलिक जफर इकबाल साहब जो तो बुधाइंदो तो उते उन वट प्रोडक्ट आहे ना है साईं चवे दो ना आहे आहे तो बिल्कुल प्रोडक्ट आहे जी जी जी जी बिल्कुल लख लायक मोहब्बत हूँ अमा जी अच्छा हाँ तो मैं तक कलर भी बुधा छो हाँ वही साई से ही राबो कर वनो साई से राबो कर वनो साई हाँ हाँ साई न तो साई से राबो कजो मलिक जफर इकबाल से वो बुधाइंद तफसील बस पो खुशी ते वंजो सब भाकुर पाए मुजा सलाम भी दिजो
1: ता दिल लगियो या न सई हाने जरूर इस्तेमाल
0: कंदा ई भी हुंदो आ बिल्कुल किथे किथे ई भी हुंदो आ इस्तेमाल कंदो न पो दिल ता जी बुधो इस्तेमाल कंदो तो पो दिल ता जी मिल्क राइस ब्यूटी सा भी लगी वेदी
1: बिल्कुल
0: हाने असा सा लगी आ पो ता जी असा जी प्रोडक्ट सा इस्तेमाल करण शर्त हुंदो आ न मुसा त दिसो गाल बोलवा जी थे पई मुसा कचरियो हलन पियो असा लगी वही असा लगी वही तो असाज करे हाँ दिसो ना वो चवंदा न सजी सिंध पिरी जो पाछो जड़ी पिरी प्यारो तो सजी सिंध प्यारी सजी सिंध प्यारी तो सिंध में रहंद सब पिरी प्यारा हाँ तो अड़े तरीके से असा जो असा दिल लगी आ तो असाज रिकमेंड थे प्रोडक्ट सा भी लाजमी लगन घुर्ज इस्तेमाल कद तो पा ही लगी वी दोस्त दोस्त नाव शामिल कव नाव खी छो जी बाबा बचड़न के सलाम जी बाबा
1: ताए को पो ताए प्रोग्राम दोले दिल जो गालियो पर वो कनेक्ट न था कन मेरा पुराना थोड़ो ने के भारत तक जो था सा भी वो बुधाऊ ना
0: बिल्कुल भारत क्यों था पो ता उन लाए जो का असा जे प्रो ये जो का पेज दिल जी गाल के भी फॉलो क्यों आए उन के अलावा एकड़ी लिंक आ वो भी मोकलिंदा से असा ता के दिल लगी आ तो दिल लगी में ये करना पौंदा खर्च तो मजो आ रेडियो जो मजो रेडियो जो मजो जो आ मोबाइल को असल जो सिस्टम अबन डारन का बुधाया उन वो तो खूबसूरत मजो आ सब बुधन वेही करे न तो जैसे उन कनेक्ट कौ न जैमल कनेक्शन खत्म तो थे प्रोग्राम जो वो तुम मोबाइल से कनेक्ट कर नंढो स्पीकर रखी ब्लूटूथ से हलो तो भी सजे शहर बुध ठीक है पैरा कुर्ब लख लाइक वही मेहरबानी मोहब्बतू कुर्ब थैंक यू।

हाणे फरमाइशूं त ॿ टे आहिनि जेके अञा असां ॿुधियूं ज़रूरु से ऐं प्रोग्राम में वक़्तनि फ़वक़्तनि शामिलु कंदा रहंदाऊं, पर उन्हनि सभिनी मज़ा जेको आहे त पोइ अव्हां जूं ई फरमाइशूं आहिनि, उहे अव्हां जूं ई फ़ोन कॉल्स आहिनि, उन्हनि मज़ा ई हिकिड़ी थींदी पूरी। पोइ जेका रहिजी वञे त पोइ सुभाणे उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल बि थिए, जीअं को मौक़ो बहानो बि रहे कचहरीअ जो ऐं प्रोडक्ट जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल बि कंदा रहूं। मिल्क राइस ब्यूटी शो आहे ऐं उन सां गॾु आऊं हूंदो आहियां, यानी की अव्हां जो ख़ादिम आबिद चौहान अठे खां नाए ताईं मुंहिंजो साथ रहंदो आहे अव्हां सां, मैरापुर वारनि सां ऐं भरपासे वारनि सां। उन खां पोइ बाद में असीं जुड़ंदा आहियूं नाए खां यारहें ताईं जुड़ंदा आहियूं दिलि जी ॻाल्हि सां गॾु मुनी सिंध सां, बल्कि सॼी सिंध सां। इवन लिंक ऐं पेज जे वसीले त असीं जेको आहे त पूरी दुनिया में जुड़िया पिया आहियूं, जिते जिते रेडियो जा चाहींदड़ आहिनि।

जी दोस्तों इन सा गर जो गात है अजो को प्रोग्राम पेंजी पुरेण ते पहुतो पेंजे मेज़बान आबिद चौहान के दींदा इजाजत आ एंजॉय गंदा ये आखरी ट्रैक अजो को सोडल फकीर जी खूबसूरत आवाज में।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: समूरी दुनिया वहां का फ्यूल रिलीफ पैकेज से हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स में विच में गालियों कामयाब इस्लामाबाद में गटजाणी दौरान बिनी दुरियन विच में मामला तय थी विया डीलर्स के स्टेट बैंक के जरिए 48 कलाकन अंदर अकाउंट्स में रकम मुंतकिल करने इतफाक पेट्रोलियम वारे वजीर पारा आइंदा स्टेक होल्डर सां मुशावरत जो अमल वधिक बेहतर ब्रांड की खातरी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो चवण है तो हुकूमत अदायगियों के तरीकेकार जो नोटिफिकेशन जल्द जारी कंदी फ्यूल रिलीफ पैकेज से अमल शुरू कर वो है
4: नंबर जो हमने रखा है पर एकड़ वो 4000 रखा है वो पर एकड़ के हिसाब से हम तीन कैटेगरी इसमें डिवाइड करेंगे एक कैटेगरी होगी जिन्होंने हमें वीट की है एक कैटेगरी जो है जो कि हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है 3.5 लाख थर्ड कैटेगरी ये इनकी मेडिकल टावर 13 मंजिला भी होगा 455 बिस्तर होंगे इसमें नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम की जो पीडी है उनके जो मुद्दे पर कोशिश की गई है एसआईओटी के लिए 575 मिलियन से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की मतलब को एग्जिट किया गया है ताकि हमारे एडवांस्ड कलेक्शन है उसको दोबारा शुरू करने का फैसला किया है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विसेज का शोबा है उसमें जो भर्तियां होती हैं और कमीशन होते हैं उनके तरीकेकार को थोड़ा सा तब्दील किया गया है स्पोर्ट्स पॉलिसी की काफी उन्होंने आगे थोड़ी भी दे दी
3: सिंध में 25 एकड़ की एराजी तई कणक पोखींदड़ आबादगार सब्सिडी पैकेज लाए अहल करार खुराक खाते के कणक फराहम कंदड़ हारियन के वादू सब्सिडी मिलंदी ज़रात वारे वज़ीर की अगवाणी में आबादगारन लाए कमेटी भी कायम सिंध काबीना आबादगारन लाए कणक ते सब्सिडी पैकेज की मंजूरी डेई छदी कणक फराहम कंदड़ हारियन लाए सब्सिडी 1000 मां वधाए 2000 रुपया फी मण कई वई वारे वज़ीर की सदारत हेठ काबीना के इजलास में 25 एकड़न ताई जमीन रखंदड़ हारियन की नई रजिस्ट्रेशन खोलन जो फैसलो सूबे में मिल्कियतन के डिजिटलाइज करण और स्पोर्ट्स पॉलिसी की मंजूरी काबीना पारा एडवांस कलेक्शन टैक्स बीहर उगाड़ जो भी फैसलो सिंध हुकूमत कणक खरीदारी में नाकामी एतराफ़ करे वरतो कणक वारे मामले ते पंजाब मथा ज्यादती जो भी इल्ज़ाम सिंध काबीना के इजलास बाद ब्रीफिंग दीदे खुराक वारे वजीर मखतूम महबूब जमान चयो आहे त असां कणक जी खरीदारी में नाकाम थिया आहियूं पंजाब टिन्ही सूबन सां ज्यादती करे रहियो आहे
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000 3105109 0300 5109
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जह में मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 03201800003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।
7: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
8: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
7: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
8: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
6: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जह में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस, इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।

0: क्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मीरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8743।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर। और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94।

चंड ते महफिल सजायो, चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ।

चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ, रही न दूर तड़पायो, दिल जी गाल करनी आ, रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐं सचाई, लबन ते मुर्का विखरल दिलन में आ बेआई, चाहत जा चंग वजायो, दिल जी गाल करनी आ, चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ।

कराची का कश्मोर कींझर का कारूंझर ताई सुहणी सिंध वासिन के आबिद चौहान जो सिक भरियो सलाम कबूल पवे। प्रोग्राम दिल जी गाल सा गदाऊ है आबिद चौहान आए अवा बुधी रहा है जीए एफएम नेटवर्क।

प्रोग्राम दिल जी गाल ऐं जी एफ एम नेटवर्क जे ॿुधंदड़नि सभिनी मानायतनि महबूबनि प्रेम प्यारनि दिलरुबा दोस्तनि खे वेलकम भलीकार ख़ुशामदीद।

सितारा जगमगाईंदा कती आकाश डे कहंदी सितारा जगमगाईंदा कती आकाश डे कहंदी प्री तू मां न हुंदासे नदीअ ते ॿूर पियो किरंदो पखी सुरमा पियो ॿोलींदो लय जे लाम पई लुॾंदी लई जी लाम पई लुॾंदी पिरी तूं मां न हूंदासे जॾहिं सावण अची लहंदो नवां खे साज़ छेड़ींदो जॾहिं सावण अची लहंदो नवां खे साज़ छेड़ींदो पलर पलोट सी हूंदी प्री तूं मां न हूंदासीं

दोस्तों प्रोग्राम में शामिल कंदा से मास्टर मंजूर जी खूबसूरत आवाज में ये खूबसूरत ट्रैक सिंगार जा समूरा हथियार यार तो वट

0: गोश्त जी पैदावार 50 सालन खां आज़मायल सखर वारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन खां नालो वठी तलब कंदा।
1: हा भाग भरी चंगो थो लगे, मां हाणे ई थो वठी अचां।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे बारन के पोलियो खां बचाव जब कतरा जरूर पियारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफ़ती ताकत के वधाइन था ऐं इन्हन जे ख्वाबन के उडाम ॾियन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माज़ूरी।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एम, अवां जी फ्रेंडली फाइट थियो क्रीम। हासिल करण लाइ ब्यूटी इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय कॉन
5: इंटरनेट। चर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा। जुमे छंछर ईंदो, यादि रखे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज, नक कन गलो पुराणो नज़लो निचो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोर वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिलि जा मर्ज़ फालिज खंघ टी अल्सर मादिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
6: हर नज़र आपकी खूबसूरती जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे। दाग धब्बे झुर्रिया और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109-03000-3105-109।
4: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03000-3385-69। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03000-3385-69।

असांजी आशिकीअ खे तूं ॾींहं तमसील थो कहिड़ी, असांजी आशिकी खे तूं ॾींहं तमसील थो कहिड़ी, विसल पियो उस भासे थो, जुदाई छांव जहिड़ी आहे।

0: भी रहा ना हिन विसाणा दीप सांझीअ जा। सितारा भी रहा ना हिन विसाणा दीप सांझीअ जा। वञो इमदाद खे ॻोल्यो खुलियल हिन घर जा दरवाज़ा। मञई कान थी ही दिल ॾिसे थी ख़्वाब शीशन जा। इन ई आवारगी पोयां असांजा नेण पत्थर थिया। वेलकम भलीकार, ख़ुशामदीद प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि सां गॾु। आऊं आहियां आबिद चौहान ऐं अव्हां ॿुधी रहिया आहियो जीए एफएम नेटवर्क। जी दोस्तो, उमीद त बिल्कुलु ख़ैरु ख़ैरियत सां, ख़ैरु आफ़ियत सां पंहिंजे बचड़नि सां गॾु शादो आबाद हूंदो ऐं ॿुधंदा हूंदो जीए एफएम नेटवर्क दिलि जी ॻाल्हि। दिलि जी ॻाल्हि में हींअर दिलि जी ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो आहे। शामिल कंदासीं कॉल। अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं किथां खां? हलो हलो
1: हलो, सकर साहब थो ॻाल्हायां सर।
0: नालो सुणा।
1: अनवर अली मंगी आचर घिटी खां सर।
0: अनवर अली मंगी आचर घिटी खां वेलकम भलीकार प्यारा प्रोग्राम में। कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो?
1: दुआ सर, तव्हां ख़ुशि आहियो, ॿियो ख़ैरु हाल?
0: A1 अलाह जा एहसान।
1: दुआ दुआ तव्हां तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधण लाइ
0: जी जी
1: इंतज़ार कंदा आहियूं।
0: वॾी महिरबानी, मोहबतूं अवां जूं मान।
1: ॿियो सभु ख़ैरु आहे सर, ख़ुशि आहियो न?
0: अलाह जा एहसान। प्रोग्राम ॿुधो पिया।
1: शेर अर्ज़ु कंदासीं।
0: इरशाद इरशाद,
1: दिलि जी ॻाल्हि त तव्हांखे ॿुधाइणी पवंदी आहे साईं।
0: जी कयां, बिस्मिल्लाह
1: अर्ज़ु कयां सर। दिलि तो चाहता है मैं पंछी बनूं, पर तो है लेकिन उड़ा जाता नहीं।
0: हाँ।
1: यार की कोई खबर लाता नहीं।
0: हाँ।
1: सब लबों पर है मगर जाता नहीं।
0: वाह वाह।
1: जी तो चाहता है कि जोगी बनूं, दर बदर मुझसे फिरा जाता नहीं। यार की कोई खबर लाता नहीं, सब लबों पर है जाता नहीं। जी तो चाहता है कि सजदे करूं, बे नमाजी हूँ झुका जाता नहीं। यार की कोई खबर लाता नहीं, दम लबों पर है मगर जाता नहीं।
0: क्या बात है।
1: या इलाही कौन सी मंजिल है वो, जो उधर जाता है इधर आता नहीं। यार की कोई खबर लाता नहीं।
0: लाजवाब साईं।
1: मुझे दोस्तन जा नालान सर।
0: शामिल क्यों?
1: बुटा रोड का साईं नादर हुसैन शाह, गाबिर हुसैन शाह ऐं आचर गिटी सकर का रियाज चौहान ऐं हमीद कुरेशी ऐं अहमद अली मंगी, मनोहर अली मंगी, मोहम्मद अली मंगी। सर अर्ज़ु आहे साईं, कलाम त अॻे बि चयोसीं, तव्हां न ॿुधायो।
0: जी
1: सभु दिला सां जन दिल भर तोसां मिलाए कोई नथो।
0: लॻे
1: जो गानो आहे,
0: महिरबानी
1: करे ॿुधाईंदा।
0: लाज़मी प्यारा प्रोग्राम ॿुधंदा रहो। वॾी
1: महिरबानी सर।
0: क़ुर्ब।
1: ओके ख़ुदा।
0: बिल्कुलु अवां जूं कॉल्स वठबियूं बिना कंहिं ताख़ीर जे। अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं किथां खां?
2: वालेकुम सलाम, साल सोडो खान ज़रदारी मोरो खां।
0: सोडो खान ज़रदारी मोरो खां, वेलकम भलीकार
2: बहिरा।
0: A1 अलाह जा एहसान। अवां ॿुधायो कीअं आहियो? काश ईअं एंजॉय मां बि करे सघां, ईअं प्रोग्राम ॿुधी करे कंहिं आरजे जो दोस्त जो अवां सां गॾु थदड़ी हवाउनि में वेहां। पर ठीकु, अवां लाइ असां वेठा आहियूं हिते, अवां थदड़ी हवा एंजॉय कयो। छा चवणु चाहींदो का दिलि जी ॻाल्हि?
2: दिलि जी ॻाल्हि में तव्हांजो
0: लख थोरा लख थोरा इहे मोहबतूं अवां जूं। नथी अॼु पहिरीं काल खां वठी इहे ई मयारूं हलंदियूं। अलाह ॿुधायो साईं, अॼु फरमाइश कयो, शामिल कयूं था। लॻी थो प्यार जे क़ाबिल, बिल्कुलु अॼु लाज़मी हलंदो। दोस्तनि जा नाव शामिल कयो।
2: ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਫਰਜਨ ਮੁਖਤਿਆਰ ਇਕਬਾਲ ਸੇਲ ਅਨਬਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧਨ ਕਰ ਸਕਣ
0: ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਿਆਰਾ ਕੁਰਬ
2: ਬੋਲਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਗਿਆ
0: ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਜਾਓ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਜਾਓ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਕੁਰਬ इहे अवाजूं मयारूं मोहबत में मूंखे वणंदियूं बि आहिनि किथे बि कंप्लीट थींदियूं आहिनि फरमाइशूं किथे रहिजी बि वेंदियूं आहिनि इन्हनि लाइ माज़रत घुरंदासीं कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में अस्सलामु अलैकुम केर साईं किथां खां साईं मुंहिंजा साईं मुंहिंजा जी कयां वेलकम भलीकार साईं मुंहिंजा अलाह जा अहसान दुआऊं
2: सुलेमान
0: शाह भी शामिल कंदासीं प्रोग्राम में लख लख मोहबतूं मेहरबानी वालेकुम सलाम प्यारा कुर्बानी।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: 9:45 PM This time check is 9:45 PM
3: It's 9:45 PM This time check is brought to you by
4: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing

0: बिल्कुलु कल्ह कुझु दोस्तनि जी इहा मयार बि आई त ब्रेक्स ॾाढा जाम आहिनि ऐं ब्रेक्स बे लाज़मी हूंदा आहिनि ज़िंदगी में, ब्रेक बि वठिणो पवंदो आहे। लाइफ जेकॾहिं हिकु रफ़्तार सां हले त पोइ हादसा बि थी पवंदा आहिनि किथे किथे, उन में नंढड़ा शॉर्ट ब्रेक्स लाज़मी आहिनि। असांजे प्रोग्राम लाइ जेके सहकार कनि था दोस्त, उन्हनि जा जेके त एड्स बि लाज़मी हूंदा आहिनि शामिलु कंदासीं। सो अॼु वञण खां अॻु में मूं अव्हां खे इतलाउ कोन ॾिनो आहे, हलिया वियासीं, इन लाइ माज़रत खायूं। जी दोस्तो, अव्हां जी फरमाइश बि पूरी कंदासीं, पर जेकॾहिं ब्रेक खां पोइ वरी अञा जेकॾहिं गीत न हलिया वेंदासीं त पोइ दोस्त कुझु नाराज़ थी वेंदा। कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं किथां खां? गुलाम सरवर ज़रदारी मोरो खां। वेलकम, भलीकार पहिरां, कहिड़ा हाल
1: आहिनि?
0: दुआऊं अलाए सां। प्रोग्राम कीअं पियो लॻे?
1: जी साईं, बिल्कुल
0: बाक़ाइदगी सां,
1: साईं बिल्कुलु सफ़ा वेरी गुड लॻो पियो आहे।
0: वाह साईं, वाह वाह, लख थोरा मोहबतूं अमां जूं। छा चवणु चाहींदो का दिलि जी ॻाल्हि?
1: साईं दिलि जी ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांजो प्रोग्राम जेको असां तारीख़ साईं ॿुधंदा आहियूं,
0: हा,
1: ॾाढो दिलि ख़ुशि थींदी आहे साईं।
0: साईं मूंखे बेहद ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं अव्हां जा इहे वीचार ॿुधंदा आहियूं ऐं अव्हां सां ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं, मूंखे बेहद ख़ुशी थींदी आहे।
1: जी साईं, दोस्तनि साईं,
0: दोस्तनि खे बि शामिल कयो, को शेर त ॿुधायो, को प्यार भरियो, को मोहबत जो
1: शेर साईं।
0: हा शेर,
1: शेर कोन थो अचे साईं,
0: शेर नथो अचे। हलो दोस्त, दोस्त शामिल कयो।
1: दोस्त साईं, बोरो खान साईं लाखो साईं इजाज़ा माला विस्तरो।
0: जी इहे
1: साईं दोस्तान साईं
0: मज़ाक, बस थोरा दोस्त है
1: साईं, बस बस जेके आहिनि पूरा हुजनि साईं, घणा न
0: हुजनि, हा, जिन सां निभाए सघिजे,
1: निभाए सघिजे साईं।
0: वाह साईं, वाह वाह, लाजवाब मोहब्बतूं पहिरां प्रोग्राम में कॉल
1: करण लाइ।
0: ॾाढी शॉर्ट पर तमामु प्यारी कॉल, असां कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं किथां खां? वालेकुम सलाम, केरु पहिरां किथां खां? साईं मुंहिंजो थोरो आवाज़ पंहिंजो वॉल्यूम वधायो, तमामु घटि आहे पर ॻाल्हायो।
2: प्रोग्राम ॿुधूं था साईं,
0: वॾी महिरबानी, मोहबतूं कुर्ब साईं, लख थोरा, छा चवणु चाहींदो, को प्यार जो पैगाम, का दिलि जी
2: ॻाल्हि? प्रोग्राम ॾाढो मज़ेदार आहे, कॾहिं साल लॻी आहे, कॾहिं न लॻी आहे, थोरी न लॻे थी, लॻे थी।
0: इहे मोहबतूं तव्हांजो पोइ बि ॿुधो बि पिया प्रोग्राम ऐं कॉल जो वेट बि कयो पिया, कॉल बि कयो बिल्कुलु, पर कॉल करण जे चकर में प्रोग्राम जो चस बि न विञाइजे, प्रोग्राम बि ॿुधजे। हाणे जीअं ॿिया दोस्त वेटिंग में हूंदा, उहे नंबर रीडायल ते लॻायूं बीठा हूंदा, पर प्रोग्राम ॿुधजे बि सही, ॻाल्हियूं ॿुधजनि ॿियनि दोस्तनि जूं, महबूबनि जूं, असांजूं बि ॿुधजनि। ऐं वॾियूं महिरबानियूं, मां मुंहिंजी पंहिंजी कोशिशि हूंदी आहे अव्हां जूं वधि खां वधि ॿुधां। दोस्तनि जा नाव शामिल करणु चाहींदो? ॿुधायो न, वाह वाह, मां वरी चयमि त कोन ॿुधाइनि था दोस्त। हा साईं, वाह
2: वाह,
0: लाजवाब साईं, लाजवाब, क्या बात, क्या बात। दोस्तनि जा नाव शामिल कंदो?
2: दोस्तनि जा नाला सभिनी,
0: वॾी महिरबानी, वालेकुम सलाम, कुर्ब लख लाइक़ मोहबतूं पहिरां।
2: फरमाइश थोरी हलाए न था,
0: हलायूं था, बसि फरमाइश, हाणे सिलसिलो तव्हांजी ॻाल्हि लॻी वई, तव्हां ॿुधो, कलाम हलायूं, कलाम हलायूं था, कलाम हलायूं था, हाणे थो हलायां, हुकुम हुकुम अवांजो अखियुनि ते। ठीकु आहे साईं, हाणे फरमाइश सां गॾु जेको आहे त बिल्कुलु बाक़ाइदे सां ऑडर थो पियो अचे, सो अव्हांजो ऑडर अखियुनि ते अव्हांजे हुकुम जी तामील कंदे शमन अली मीरालीअ जी ख़ूबसूरत आवाज़ में हीउ ट्रैक ॿुधूं था। सभु दिलासा ॾियनि था पर तोसां मिलाए कोई नथो।

0: जी दोस्तों फरमाइशूं वधीक आहिनि जेकॾहिं असां ब्रेक ब्रेक वठी करे मिलाए करे जेकॾहिं वरी गीत हलाईंदा रहंदासीं त पोइ अवां सां ॻाल्हि ॿोल कोन थी सघंदी। सो गीत शॉर्ट हलाइण लाइ हथ ॿधी दोस्तनि खां उन्हनि खां मादरत, जिन जी ॻाल्हि नथी आहे उन्हनि सां ॻाल्हि त कयूं न, प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि आहे त पोइ ॻाल्हियूं कीअं न शामिल कयूं। अस्सलाम वालेकुम, केरु पहिरां किथां खां?
1: गलती
0: चऊं त पोइ नाराज़गी न कजो मिली। मैनेजमेंट में आहिनि स्टेशन डायरेक्टर साहब आहे, बाबर साहब आहे या बी जेका टीम आहे, बिल्कुल सभु ॿुधनि पिया। इनशाला इहो हल कंदासीं मसलो, जिते जिते शॉर्ट थींदी असांजी कवरेज उते पूरो करण जी कोशिशि कंदासीं। छा चवणु चाहींदो, दिलि जी ॻाल्हि, को प्यार जो पैगाम, को शेर, को मोहबत जो?
1: जी मां त हिकु त प्यार जो पैगाम इहो आहे त पंज वक़्त सां मुस्लमाननि खे निमाज़ पढ़णु मतिलबु पढ़णु लाज़मी आहे।
0: सही
1: जी। ऐं ॿियो दीन इस्लाम सां मोहबत कजे, हिकु ॿिए सां पाड़े ओड़े वारनि सां फिटाइजे न, उन्हनि सां प्यार मोहबत जो पेश।
0: सही सही
1: जी।
0: ॿियो दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहींदो?
1: जी मुंहिंजो भाउ आहे मोहम्मद अमीन करोड़ो, मुंहिंजो दोस्त आहे निसार करोड़ो, अफ़ज़ल करोड़ो, जेके बि भाइर भेनरियूं ॿुधनि था तव्हांजी टीम खे, पूरे नेटवर्क खे सलाम।
0: वॾी महिरबानी। वालेकुम सलाम प्यारा कुर्ब, थैंक यू।
1: ठीकु
0: जी दोस्तों, न्यूज़ ब्रेक ईंदो ऐं कमर्शियल ब्रेक बि ईंदो, उनजे वञण खां अॻु में असां हिकु कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं किथां? वालेकुम सलाम, केरु पहिरां किथां खां?
2: सर मीर ख़ादिम हुसैन ॻाल्हाईंदो, 15 लाइन लोको शेड रोड़ी खां।
0: मीर ख़ादिम हुसैन लोको शेड रोड़ी खां?
2: जी सर, 15 लाइन लोको शेड रोड़ी।
0: कहिड़ी लाइन?
2: 15 लाइन,
0: 15 लाइन
2: रोड़ी।
0: मीर साईं, अवां सां ॻाल्हि ॿोल करे अलाए छो ईअं लॻो, अवां जे आवाज़ मां त अवां ॼातल सुञातल लॻो पिया।
2: सर मां ॿ टे ॾींहं खां यकीन कयो त कालू कंदो रहियो आहियां, लेकिन काल कुदरती न लॻी। हिकु दफ़े मां 9:40 मिंट ते मोबाइल बंदि करे छॾी।
0: 9:40 ते अवां मोबाइल बंदि कई या असांजी बंदि थी?
2: न सर, मां पंहिंजी मोबाइल इन लाइ बंदि कयो, हिकु त काल नंबर लॻो पियो, प्रोग्राम में मज़ो बि न पियो अचे, टे ॾींहं पहिरियों जी ॻाल्हि आहे।
0: अच्छा।
2: ऐं वरी असां तव्हांखे हिकिड़ी फरमाइश वेन एक्शन भटी जो
0: जी,
2: मां दा रुतबा सभु तूं चा माह रब दा रूप।
0: जी जी।
2: तव्हां चयो त असां प्ले लिस्ट में लॻाए छॾियो आहे, लेकिन उहो हिन टाइम ताईं न प्ले लिस्ट में आयो आहे, न को दोस्तनि ॿुधो आहे, न असां ॿुधी वियो।
0: कहिड़ो था चओ?
2: मां दा रुतबा सभु तूं ऊचा, मां है रब दा रूप, आवाज़ इनायत हुसैन भट्टी।
0: मां हींअर शामिल कयां थो।
2: हा पर सर भले से ख़बर खां पोइ छा वरितो, लेकिन इहो
0: अमर
2: जे नाले ते आहे, इहो हिनखे फुरुक जो महिरबानी करे अधु में न लाहिजो।
0: इन ॻाल्हि खे ॾिसी वठंदासीं, पर पहिले लाज़मी कंदासीं। थैंक यू पहिरां,
2: महिरबानी।
0: वक़्तु थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो, न्यूज़ ब्रेक खां पोइ वापसि वरी वधंदासीं। ॿुधंदा रहो जी एफ एम नेटवर्क

0: It's 10 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: सचल की सरमस्त धरती
3: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
5: वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत जी बचत स्कीम जी मंजूरी ॾेई छॾी। इजलास दौरान माली साल 2026-27 जी बजट में नॉन एआरई में 5% कटौती जो फ़ैसिलो। शहबाज शरीफ चयो आहे त घटि आमदनी ऐं मुआशी तौर कमज़ोर तबिके लाइ फ्यूल सब्सिडी शुरू थी वई आहे। मोटर साइकिल, रिक्शा ऐं 800 cc ताईं जी गाॾियुनि लाइ फ्यूल सब्सिडी ॾिनी पई वञे। आलमी मंडी में तेल जे अघनि में वाध सबब समूरी दुनिया महांगाई खे मुंहुं ॾेई रही आहे। बचत स्कीम ते बिना फ़र्क़ जे अमल दरामद कयो वञे।

रिलीफ पैकेज से हुकूमत ए पेट्रोलियम डीलर्स विच में गालू कामयाब। इस्लामाबाद में गडजाणी दौरान बिनी धुरियन विच में मामला तय थी विया। डीलर्स के स्टेट बैंक जरिए 48 कलाकन अंदर अकाउंट्स में रकम मुंतकिल करण ते तफाक। पेट्रोलियम वाले वजीर पारा आइंदा स्टेक होल्डर्स सा मुशावरत जो अमल वधिक बेहतर बणण जी खातरी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो चवण आए ते हुकूमत अदायगियन जे तरीकेकार जो नोटिफिकेशन जल्द जारी कंदी। फ्यूल रिलीफ पैकेज ते अमल शुरू कयो वियो आहे।

0: बेसलाइन नंबर जो हमने रखा है पर एकड़ वो 4000 रखा है, वो पर एकड़ के हिसाब से हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरी होगी जिन्होंने हमें लीड दी है, एक कैटेगरी जो है जो कि हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है 3.5 लाख, थर्ड कैटेगरी ये होगी कि हम और रजिस्ट्रेशन जो है और फार्मर्स को रजिस्टर करने के लिए अराउंड 2.5 लाख और फार्मर्स को हम रजिस्टर भी करेंगे।
1: जो प्रॉपर्टीज है सिंध में उनको डिजिटलाइज कर रहे हैं और उनकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसफर का जो है एक और बड़ा मेडिकल टावर बनाने जा रहे हैं 30 और 30 हजार इनकी मेडिकल टावर 13 मंजिला ही होगा, 455 बिस्तर होंगे इसमें। नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम की जो पीढ़ी है उनके जो मुख्यमंत्री को कोशिश की गई है SIOT के लिए 575 मिलियन से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की मदरों को एग्जिट किया गया है ताकि हमें पोस्ट कलेक्शन है उसको दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विसेज का शोबा है उसमें जो भर्ती होती हैं और प्रमोशन होते हैं उनके तरीके काम को थोड़ा सा तब्दील किया गया है। स्पोर्ट्स पॉलिसी की काफी मैंने आज एक मोदी दे दी।
2: सिंध में 25 एकड़ की एराजी ताई कणक पोखीदड़ आबादगार सब्सिडी पैकेज लाए हल करार, खुराक खाते के कणक फ्राहम कंदड़ हारियन के वादू सब्सिडी मिलंदी, ज़रात वारे वजीर जी अगवाणी में आबादगारन लाइ कमेटी भी कायम, सिंध काबीना आबादगारन लाइ कणक ते सब्सिडी पैकेज की मंजूरी रही छी, कणक फ्राहम कंदड़ हारियन लाइ सब्सिडी 1000 मां वधाए 2000 रुपया फी मण कई गई। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि काबीना जे इजलास में 25 एकड़नि ताईं ज़मीन रखंदड़ हारियुनि जी नई रजिस्ट्रेशन खोलण जो फ़ैसिलो, सूबे में मिल्कियतनि खे डिजिटलाइज करण ऐं स्पोर्ट्स पॉलिसी जी मंज़ूरी, काबीना पारां एडवांस कलेक्शन टैक्स ॿीहर उघाइण जो बि फ़ैसिलो। सिंध हुकूमत कणक ख़रीदारी में नाकामी जो इतराफ़ करे वरितो, कणक वारे मामले ते पंजाब मथां ज्यादती जो बि इल्ज़ाम। सिंध काबीना जे इजलास बाद ब्रीफिंग ॾींदे खुराक वारे वज़ीर मखदूम महबूब ज़मान चयो त असां कणक जी ख़रीदारी में नाकाम थिया आहियूं, पंजाब टिन्ही सूबनि सां ज्यादती करे रहियो आहे, सिंध जी कणक पंजाब वई ऐं पंजाब सिंध लाइ वरी पंहिंजो बॉर्डर बंदि रखियो, असां 2500 रुपियनि जी सपोर्ट प्राइस वारे निज़ाम मां निकिरी चुका आहियूं, हाणे असां पंहिंजो सपोर्ट प्रोग्राम आणींदासीं। मोहम्मद बख्श मेहर चयो त सिंध में कणक जी पोख घटि थींदी पई वञे, हिन भेरे बि असांखे ॾुखियनि खे मुंहुं ॾियणो पियो, वधीक 2.5 लख आबादगारनि खे रजिस्टर्ड कंदासीं ऐं आबादगारनि खे मज़बूत बणाईंदासीं। जाम खान शोरो चयो त 2025 में जेकॾहिं गोदामनि में कणक मौजूद न हुजे हा त मुल्क में अटे जो वॾो बहरान पैदा थिए हा। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर सां ईरान जे परॾेही वज़ीर अब्बास राक्षी जो टेलीफोनिक राब्तो, हिते जी सूरतहाल इलाक़ाई अकभराई ऐं गॾियल दिलचस्पी वारनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल। ईरानी ख़बरू एजेंसी मूजिबि अब्बास राक्षी जो फील्ड मार्शल सां फोन ते राब्तो चीन जे दौरे दौरान थियो, अब्बास राक्षी जो बीजिंग जे दौरे दौरान तुर्क हमनसब सां बि फोन ते राब्तो। अब्बास राक्षी चयो आहे त बीजिंग में चीनी अॻवाननि सां कामयाब मुशावरत थी, सदर शी जिनपिंग जो अमन बाबति बयान अहम हैसियत रखे थो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।